नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच

0: पर लाने की क्षमता देखी। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि यह घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्र नगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
1: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र मजबूत, सक्रिय और समयबद्ध है। उन्होंने न्यायपालिका में लगातार सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में कल आयोजित 6ठे राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में मुख्य भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुधार को नियमित प्रक्रिया का होना चाहिए। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, मी महेश कोठारे। मधुर मराठी गाणी आणि छान छान माहितीसाठी आणि मनोरंजनासाठी नक्की ऐका आणि मजेत रहा आकाशवाणी FM रेनबो वाहिनी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने कहा 2000 रुपए तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी

0: डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद UPI लेन देन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
2: दो दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में $8.66 अरब से घटकर वर्ष 2025-26 में $7.95 अरब रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेतकिन ने भारत और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख व्यापार समूह मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
6: गिवन ए चॉइस ए जुडिशियल ऑफिसर।
7: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर

0: लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
1: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमबीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की

0: श्रृंखला में एक शून्य की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नव भारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की ये खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने कहा, 2000 रुपए तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ, भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. UPI payments of up to 2,000 rupees to remain free of bank charges. World Circular Economy Forum 2026 to begin today at Gandhinagar in Gujarat. India and Canada begin next round of talks on proposed trade pact. Chief Justice of India Justice Suryakant says mechanism developed by Supreme Court and High Courts to deal with complaints against judges is robust and very responsive. CBI registers FIR in celebrity manager Disha Salian death case. And in men's cricket, second T20 international between India and Afghanistan to be played this evening in Delhi. And now the news in detail. Government has notified rules specifying that banks and payment system providers cannot impose charges on UPI transactions of up to 2,000 rupees. The Finance Ministry issued a gazette notification yesterday under the Payment and Settlement Systems Act 2007. It listed UPI transactions of up to 2,000 rupees and debit card payments made through RuPay as electronic payment modes for which customers cannot be charged. More from our correspondent.
4: According to the gazette notification issued by the Finance Ministry, no bank or system provider can impose any direct or indirect charge on a person making or receiving payments through RuPay-powered debit cards and UPI. The notification specifically categorized RuPay-powered debit cards and UPI transactions of up to 2,000 rupees as electronic modes of payment. The Ministry has notified the changes under the Payment and Settlement

0: वाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 8:40 हो गए हैं सुबह के और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं, आपका अपना आरजे दोस्त रेहान। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर म्यूजिकली योर्स। और मस्त मुंबई कार्यक्रम का ये समय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, तो सबसे पहले आप सभी को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का, जिसका नाम है मस्त मुंबई।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

अमित त्रिवेदी और साथियों की आवाज़ों में ये गीत अभी आपने सुना केदारनाथ फिल्म से था। अमित त्रिवेदी का संगीत और अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ आपका आरजे दोस्त रेहान। जैसा कि आप जानते हैं आज मंगलवार 15 सितंबर 2026 है और आज के दिन विशेष की अगर हम बात करें तो आज है इंजीनियर्स डे। जी हाँ दोस्तों, हर साल 15 सितंबर को देश भर में राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इस दिन देश के विकास में इंजीनियर्स के योगदान को याद किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंजीनियर्स डे के लिए 15 सितंबर की ही तारीख क्यों चुनी गई, इसके पीछे क्या कहानी है और भारत के महानतम इंजीनियर्स में से एक सर मोक्षगुंडम विश्वरैया की ये बात होती है क्योंकि इन्हीं की जन्म के मौके पर ये डे जो है मनाया जाता है। तो मस्त मुंबई कार्यक्रम में आज कल और आज इंजीनियर्स डे की बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं दिल चाहता है फिल्म का ये टाइटल ट्रैक।

शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ों में ये गीत अभी आपने दिल चाहता है फिल्म से सुना। इसे लिखा जावेद अख्तर ने और धुन तैयार की शंकर एहसान लॉय ने। 8:57

मिनट हो गए हैं सुबह के और कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई। मैं हूं आपके साथ आपका आरजे दोस्त रेहान। हम बात कर रहे हैं आज इंजीनियर्स डे की। जी हाँ, 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले के मुद्देनहल्ली गांव में जन्मे सर मोक्षगुंडम विश्वरैया को सर एमवी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी जयंती के सम्मान में ही हर साल जो है 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। भारत में इंजीनियर्स डे मनाने की परंपरा 1968 से शुरू हुई और तब से हर साल 15 सितंबर का दिन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान देने वालों को समर्पित किया जाता है। सर एमवी के इंजीनियरिंग के योगदान की बात करें तो उन्होंने जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में बेहद ही महत्वपूर्ण काम किया। सुनते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इस फिल्म का ये ट्रैक।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

नमस्कार, 5 मिनट और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। हम बात कर रहे हैं MV सर की। जी हाँ सर, MV की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रही है उनकी प्रशासनिक भूमिका। 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान के तौर पर उन्होंने शिक्षा, उद्योग, बैंकिंग और बुनियादी ढांचे समेत कई क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा दिया और इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर यानी कि आधुनिक मैसूर का जनक भी कहा जाता है। उनके योगदान को देश को ने भी जो है काफी सम्मान दिया। 1955 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी, जिसके कारण उनके नाम के साथ सर शब्द जो है जुड़ गया। तो इंजीनियरिंग डे के लिए जो है सर MV का बहुत ही बड़ा योगदान है और उनकी जयंती के मौके पर ही उन्हें याद करने के लिए ये डे जो है हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है।

केके और साथियों की आवाज़ों में ये मुंबई मस्त कलंदर फिल्म का आपने गीत सुना। इंजीनियर्स डे की बात हो रही है और हमारे बॉलीवुड सितारों का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कई ऐसे सितारे हैं जिनके पास इंजीनियर की डिग्री है और वो एक सफल अभिनेता भी हैं। तो आज इस मौके पर कुछ ऐसे बॉलीवुड सितारों और अभिनेत्रियों की बात मैं करूंगा जिनके पास इंजीनियर की डिग्री है और इसके बावजूद उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ करके जो है ग्लैमर की दुनिया को यानी कि बॉलीवुड की दुनिया को जो है अपनी किस्मत की मंजिल बनाई और यहाँ पर उन्होंने सफलता हासिल की।

तो दोस्तों, इंजीनियरिंग्स डे पर हम सबसे पहले बात करते हैं अभिनेता कार्तिक आर्यन की। युवाओं के बीच बेहद ही लोकप्रिय कार्तिक आर्यन के माता पिता दोनों ही डॉक्टर हैं और जाहिर है परिवार चाहता था कि बेटा भी डॉक्टर ही बने या फिर इंजीनियर बने। कार्तिक ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन भी लिया और इंजीनियरिंग की क्लास जो है के दौरान ही उनका मन एक्टिंग की ओर जो है ज़्यादा मुड़ा और उन्होंने ऑडिशन भी दिया और ऑडिशन देने के बाद जो है क्लासेस स्किप करके उन्होंने जो है ये काम किया ऑडिशन देने का। और धीरे धीरे जब उन्हें बॉलीवुड में काम मिला तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही कार्तिक ने जो है मॉडलिंग शुरू कर दी और यहीं से धीरे धीरे कार्तिक आर्यन जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ जो है झुकते चले गए और आज उन्होंने अपना एक जो मुकाम बनाया बॉलीवुड में वो हर किसी का सपना होता है। तो कार्तिक आर्यन आज एक सफल अभिनेताओं में से एक हैं। सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

अखिल और धोनी भानुशाली की आवाज़ में ये गीत अभी आपने लुका छिपी है फिल्म से सुना। 9:21 और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर मिस कुलियर्स। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडिया वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। कई सारे श्रोता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज मोहोड़ अमरावती से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। इसके अलावा कल्पना राजू उल्लास नगर से, यशवंत अड़मुड़े जो इन्होंने धाराशी से प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रमोद खारनीस पुणे से इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। इसके अलावा जो और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, श्रीधर मोराजकर, प्रमोद चिंचोलकर, इसके अलावा संजीव भ्रू, फिरोज सिंगापुरिया और पंकज के अलावा बाबा डाबर वैदेही जी और विजेंद्र घाटोल अकोला से इस प्रोग्राम को इस वक्त सुन रहे हैं। सभी इंजॉय कर रहे हैं। आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल जो है इस वक्त जो है ट्यून इन किया इन सभी श्रोताओं ने और कार्यक्रम चला है मस्त मुंबई। और आज बात हो रही है इंजीनियरिंग डे की, यानी कि अभियंता दिवस। आज राष्ट्रीय अभियंता दिवस है और इस मौके पर कुछ ऐसे सितारों की हम बात कर रहे हैं जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है और उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री को छोड़ बॉलीवुड यानी कि ग्लैमरस की दुनिया में अपना करियर बनाया है। कई सितारे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और उनमें एक है कार्तिक आर्यन भी।

अरिजीत सिंह की खूबसूरत आवाज़ में ये गीत सुना। और अगर इंजीनियरिंग एक्टर की अगर हम बात करें तो इनमें अमीषा पटेल का नाम भी शामिल है। अमीषा पटेल ने मुंबई के एक स्कूल से पढ़ाई की और स्कूल के दिनों में वो हेड गर्ल भी रह चुकी हैं। और इसके अलावा अमेरिका की एक टॉप यूनिवर्सिटी से बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने शुरू की। हालाँकि 2 साल बाद उन्होंने अपना कोर्स जो है बदल कर इकोनॉमिक्स ले लिया और आगे चल कर अमीषा पटेल एक्टिंग की दुनिया में आई। और उनका जो पढ़ाई का सफ़र रहा वो काफ़ी अलग रहा। स्कूल की हेड गर्ल से लेकर बॉलीवुड की एक जानी मानी अभिनेत्री बनने तक का उनका सफ़र। और उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है और उसके बाद गदर जैसी फिल्में, ब्लॉकबस्टर फिल्में जो हैं हिंदी सिनेमा में रही हैं। आइए सुनते हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में गदर फिल्म का ये गीत।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

सुबह के 9:37 हो गए हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई आरजे रेहान के साथ, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर। हम बात अगर आर माधवन की करें, जिनकी शानदार एक्टिंग ने सबका दिल जीता था फिल्म धुरंधर में, वो एक राव प्रमुख की भूमिका में नजर आए थे। माधवन की अगर हम बात करें तो आर माधवन इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की, और उसके बाद उनका सपना बॉलीवुड नहीं बल्कि आर्मी अफसर बनने का था। कॉलेज के दिनों से ही वो एनसीसी कैडेट रहे, और उन्हें जो है महाराष्ट्र के बेहतरीन एनसीसी कैडेट्स में जो है गिना जाता है। आर माधवन की अगर हम बात करें तो आर माधवन जो है ब्रिटिश आर्मी, रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स के साथ उन्होंने ट्रेनिंग भी ली है, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। आर्मी में जाने का सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर माधवन फिल्म और टेलीविज़न दुनिया की मशहूर जो है अभिनेता बन गए, और उनकी एक्टिंग के हम सभी कायल हैं। आर माधवन की फिल्म रहना है तेरे दिल में का ये गाना सुनते हैं।

और मधुबन के बाद अगर हम बात करें तापसी पन्नू की, जिन्होंने एक्टिंग से बॉलीवुड में खास पहचान बनाई है, तो तापसी पन्नू भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की है। उन्होंने गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और पढ़ाई में भी वो शानदार ही रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कैट परीक्षा में 88% स्कोर किया और कुछ समय तक वो बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर उन्होंने नौकरी भी की, यानी कि कैमरे के सामने आने वाली तापसी कभी कंप्यूटर कोड और सॉफ्टवेयर की दुनिया में काम कर चुकी हैं। आइए सुनते हैं जुबिन नौटियाल और प्रकृति कक्कर की आवाज़ों में ये खूबसूरत ट्रैक।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ों में सबका बंदा है ये फिल्म सैम बहादुर का गीत अभी आपने सुना। 9:50 और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 MHz पर म्यूजिकली योर्स। बात अगर विकी कौशल की करें तो विकी कौशल ने भी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन में बैचलर की डिग्री हासिल की। बचपन से ही उन्हें ड्रामा और स्किट में दिलचस्पी थी, लेकिन इंजीनियरिंग के दूसरे साल में एक इंडस्ट्री विजिट ने उनकी सोच बदल दी। उन्हें एहसास हुआ कि शायद वो लंबे समय तक 9 से 5 की रेगुलर नौकरी नहीं कर पाएंगे, और इसके बाद विकी ने अपनी रुचि को पहचाना और इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने कदम बढ़ाया। कई सालों से विकी इस इंडस्ट्री में है। उरी जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार काम किया, सैम बहादुर, और उसके बाद जो है छावा जैसी फिल्म उनकी रिलीज हुई जिसमें उनकी एक्टिंग के सभी कायल हो गए। देवी नेवी और साथियों की आवाज़ों में सुनते हैं ये गीत फिल्म उरी से।

बात अगर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की करें तो उन्होंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इसके अलावा अभिनेत्री कृति सेनन भी जो है उन्होंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो सुनते हैं इन्हीं दो सितारों की फिल्मों से लिया ये गीत। पहला गीत है कृति सेनन की फिल्म हीरोपंथी से और दूसरा केदारनाथ से, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म से।

तो दोस्तों, आज के मस्त मुंबई कार्यक्रम में बस इतना ही। सुबह के 10 बजने वाले हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 MHz पर म्यूजिकल योर्स। आगे बढ़ें इससे पहले एक नज़र इस घंटे के प्रमुख समाचारों पर।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: केंद्र गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नवी मुंबई में छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राजभाषा विभाग ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेन देन और रुपए डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर कोई शुल्क नहीं लगा सकता है। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई थी। और अब बात क्रिकेट की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही गुरुवार को होगा। ये थे इस घंटे के प्रमुख समाचार।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: सुबह के 10:02 हो गए हैं दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं आपका आरजे दोस्त रेहान और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर म्यूजिकली योर्स और नमस्ते भारत कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूं। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत जो है उन्होंने भी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और उन्होंने बॉलीवुड में एक शानदार मुकाम बनाया था। तो आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज़ों में केदारनाथ फिल्म का ये गीत जिसके बोल हैं काफिराना।

दिस वॉज कर 8 मिनट। अरिजीत सिंह और अनिकिता गांधी की आवाज़ों में ये गीत अभी आपने केदारनाथ से सुना। सुशांत सिंह के अलावा जिन सितारों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है या फिर उन्होंने छोड़कर बॉलीवुड में अपना करियर बनाया है, उनमें रितेश देशमुख का भी नाम शामिल है, जिन्होंने आर्किटेक्चर से पढ़ाई की है। और इसके अलावा डिजाइन और आर्किटेक्चर की दुनिया नहीं बल्कि उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में अपना करियर बनाया। और इसके अलावा मशहूर अभिनेता प्रतीक गांधी का नाम भी शामिल है इस लिस्ट में, जिन्हें स्कैम 1992 से ज़बरदस्त लोकप्रियता मिली थी। उन्होंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। और इसके अलावा अक्किनेनी नागार्जुन का नाम भी इस लिस्ट में आता है, उन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और आगे चलकर सिनेमा की दुनिया में उन्होंने बड़ा नाम कमाया। लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में थी और दिल कैमरे के सामने आने के लिए बेचैन था। किसी ने क्लास बंक करके ऑडिशन दिए तो किसी ने नौकरी छोड़ी, किसी ने इंजीनियरिंग बीच में छोड़कर थिएटर का रुख किया और किसी ने डिग्री पूरी करने के बाद एक्टिंग को ही अपना करियर बना लिया। और अब कार्यक्रम के इस मोड पर कुछ ऐसी फिल्मों की बात जिसमें जो है इंजीनियरिंग का जिक्र है, जिन्होंने जो है हमें समाज को और लोगों को एक नई जो है दिशा देती है, हमारी कहानी का अहम हिस्सा रही है। तो सबसे पहले बात उन फिल्मों की जिसने इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़िंदगी को देश के हर घर घर तक पहुंचा दिया। और इनमें सबसे पहला नाम और सबसे कामयाब नाम है राजू हिरानी की फिल्म 3 इडियट्स का। जी हाँ, 3 इडियट्स ये ऐसी फिल्म थी जिसने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया बल्कि लोगों के दिलों में भी ये फिल्म बस गई। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये गीत।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

10:15 और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका आरजे दोस्त रेहान। बात हो रही है कुछ ऐसी फिल्मों की जो इंजीनियरिंग या फिर कॉलेज बेस पर बनी हैं और इनमें थ्री इडियट्स की बात। सबसे पहले आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी स्टारर थ्री इडियट्स सिर्फ तीन दोस्तों की कहानी नहीं थी, बल्कि ये फिल्म इंजीनियरिंग, कॉलेज की दोस्ती, हॉस्टल लाइफ, परीक्षा के दबाव और पढ़ाई के सिस्टम पर एक बड़ा सवाल भी उठाती है। फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यही था कि सिर्फ रैंक और नंबर के पीछे भागने के बजाय अपने हुनर और जुनून को पहचानना जरूरी है।

को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना, थ्री इडियट्स फिल्म से। अगर हम इंजीनियरिंग पर बनी फिल्मों की बात करें तो 70 के दशक की बात करें, 1969 में फिल्म रिलीज हुई थी सत्यकाम जिसका नाम था। फिल्म में एक आदर्शवादी सिविल इंजीनियरिंग के जरिए ईमानदारी, सिद्धांत और देश के निर्माण के संघर्ष को सामने रखा गया था। यानी कि इंजीनियरिंग को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि समाज और देश के निर्माण से भी जोड़कर इस फिल्म में देखा गया था। और आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो इनमें उड़ान नाम की एक फिल्म है जिसे निर्देशित किया था। 2010 में ये फिल्म आई थी विक्रमादित्य मोटवानी ने और इसके प्रोड्यूसर थे अनुराग कश्यप और रोनू स्क्रीवाला ने। अगर हम इस उड़ान फिल्म की बात करें तो उड़ान में भी सपने और थोपे गए करियर के बीच के संघर्ष को दिखाने की कोशिश की गई थी। फिल्म का केंद्र भले ही इंजीनियरिंग तक सीमित ना हो लेकिन जबरन एक करियर चुनने और अपनी पसंद का रास्ता तलाशने की जद्दोजहद इसे युवाओं से जोड़ती जरूर है। सुनते हैं इसी फिल्म यानी कि उड़ान का ये गीत।

उड़ान के बाद ऐसी ही एक फिल्म आई थी जिसका नाम था छिछोरे। सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर की इस फिल्म में हॉस्टल लाइफ, कॉलेज की दोस्ती और सबसे बढ़कर हार और सफलता के दबाव को दिखाया गया था। फिल्म ने यह संदेश देने की कोशिश की थी कि जिंदगी में एक परीक्षा में असफल होना पूरी जिंदगी में असफल होने के बराबर नहीं है। अरिजीत सिंह की आवाज में सुनते हैं ये गीत।

10:35 हो गए हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत आरजे रेहान के साथ, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव यानी कि 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर और डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। अगर फिल्म तमाशा की बात करें तो रणबीर कपूर का किरदार एक ऐसे युवा का इस फिल्म में था जो समाज और परिवार की तय हुई लीक पर चलता है, लेकिन उसके भीतर कुछ और करने की चाहत होती है। फिल्म सवाल उठाती है कि क्या सच में हम वही कर रहे हैं जो हमें पसंद है, या फिर सिर्फ वही कर रहे हैं जो समाज हमसे चाहता है। मोहित चौहान की आवाज में ये खूबसूरत गीत।

10:40। अगर हम इस मोड़ पर बात करें शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश की, तो शाहरुख खान की यह फिल्म एक ऐसे नासा वैज्ञानिक के भारत लौटने और अपने देश में बदलाव की कहानी समेटे हुए है। विदेश में शानदार करियर के बावजूद अपने गांव और वहां के लोगों की समस्याओं को देखकर उसका नजरिया बदलता है। फिल्म में दिखाती है कि असली विकास सिर्फ बड़े शहरों और बड़ी इमारतों में नहीं है, बल्कि उन लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना भी है जिन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और स्वदेश इसी कहानी को समेटे हुए थी और इसे निर्देशित किया था आशुतोष गोवारिकर ने। उदित नारायण हरिहरन कैलाश खेर की आवाज़ों में सुनते हैं स्वदेश फिल्म का ये गीत।

0: अपना ये खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

या रहमान की आवाज़ में स्वदेश फिल्म का ये गीत सुना। आज पूरे शो के दौरान हमने इंजीनियर्स डे और इंजीनियरिंग की बात करी और इस पर बने फिल्मों की बात करी, और इन फिल्मों में चाहे वो थ्री इडियट्स की दोस्ती हो, छिछोरे का हॉस्टल और असफलता का डर हो, तमाशा का जुनून हो और उड़ान में अपने सपने चुनने की जिद हो, या फिर सत्यकाम की ईमानदारी और स्वदेश में देश के लिए कुछ कर ने का जो है जज्बा हो, इन फिल्मों ने अलग अलग अंदाज में इंजीनियरिंग और युवाओं की जिंदगी से जुड़े सवालों को पर्दे पर उतारा है। और शायद यही वजह है कि इंजीनियर्स डे सिर्फ इंजीनियरों को सलाम करने का दिन नहीं बल्कि उन सभी युवाओं को याद करने का मौका भी है जो डिग्री, नौकरी और समाज की उम्मीदों के बीच अपने असली सपने को तलाश रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ आपका ये आरजे दोस्त रेहान आपसे चाहता है अब अनुमति और चलते चलते छोड़ जाता है चंद और खूबसूरत गीतों के साथ। आपसे फिर किसी दिन होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 11:30 हो चुके हैं और आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने प्रमुख गणेश मंडलों, पंडालों, यातायात स्थलों और प्रतिमा विसर्जन जुलूसों के लिए 17,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। पुलिस ने लोगों से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध या लावारिस वस्तु की सूचना तुरंत देने की अपील की है। मुख्य समाचारों में आगे, मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान 6 फीट से कम ऊंचाई वाली गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन कृत्रिम तालाबों में करना अनिवार्य होगा। नगर निगम ने विसर्जन के लिए 281 कृत्रिम तालाब के अलावा 44 समुद्र तट और जेटी तथा 23 प्राकृतिक झीलों की व्यवस्था की है। मुख्य समाचारों के अंत में, एशियाई ट्रैप चैंपियनशिप निशानेबाज सबीरा हैरिस ने के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। कार्यक्रम ब्रेक फ्री के लिए बने रहें 107.1 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप और 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन रहे हैं। दोस्तों, गणेश उत्सव का पावन पर्व चल रहा है और आप सभी को दिल से ढेरों शुभकामनाएं देती हूं मैं इस खास दिन की। और इतना ही नहीं दोस्तों, आज हम ब्रेक फ्री में आपको ले चलेंगे इतिहास के उस पन्ने पर जहां एक उत्सव सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि आजादी का शंखनाद बन गया था। साल 1893 जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी थी ताकि कोई क्रांति न पनप सके, उस काले दौर में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसने जन जन को एक सूत्र में पिरो दिया। वो रास्ता था सार्वजनिक गणेशोत्सव का। इसका मकसद केवल धार्मिक नहीं बल्कि गुलामी के बंधनों को तोड़कर मुक्त होना था। ब्रेक फ्री भी आप सभी से यही कहता है, यही बताता है कि किस कदर किसी खास व्यक्ति विशेष ने या किसी भी हमारी तरह आम इंसान ने इतनी सारी बंधनों से, मुश्किलों से, बहुत सारी चीजों से ब्रेक फ्री किया। क्योंकि जीवन में जो एक आज़ादी जीने की होती है यही अक्सर पर्याप्त नहीं होती है, सोचने की आज़ादी और बहुत अलग

अलग तरह के बंधनों को तोड़ने की आजादी भी उतनी ही जरूरी होती है। तो चलिए आज इस आजादी की कहानी से प्रेरणा लेते हैं हम, क्योंकि गणेशोत्सव चल रहा है और ये वही गणेशोत्सव है जो बाल गंगाधर तिलक इन्होंने शुरू किया था। तिलक जी ने जिस इस पूरे क्रांति की शुरुआत की थी, वही गणेशोत्सव हर साल हम इस समय मनाते हैं। दूसरा गणेशोत्सव माघी गणेश जयंती होती है, जो गणपति बाप्पा की एक्चुअल बर्थडे या जयंती मानी जाती है। और ये जो गणेशोत्सव है, ये हमारे आज़ादी का प्रतीक है। हम स्वतंत्र हैं और उसका एक बहुत ही मूल्यवान हिस्सा जो है वो ये गणेशोत्सव है। चलिए प्रेरणा लेते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त कमाल गाने के साथ।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो। मैं हूं वैशाली और फिर एक बार आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक फ्री चल रहा है और बातें हो रही हैं कि किस तरह श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ब्रेक फ्री किया उस जमाने में जो ये अंग्रेजों की हुकूमत थी, उससे कोशिश की कि सभी को एकत्रित इकट्ठा लाया जाए। और इसी उत्सव को हम गणेश उत्सव के रूप में हर साल इसी समय इसी दौरान मनाते हैं। और वाकई ये इतने प्रेरणादायी रहे और इनके बारे में जितनी चीज़ें मैं कहूँ लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक के बारे में, ये कम ही होंगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी महान हस्तियाँ हैं और हम सभी उनके बारे में इतना कुछ जानते हैं कि चाहे हम जितना भी कहें वो ना ही इन बातों के, इस तारीफ के मोहताज होते हैं और ना ही ये होता है कि भाई आप सभी उनके बारे में ना जानते हों। तो चलिए आगे कुछ और गाने और किस तरह से उनसे प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में कुछ तब्दीलियां ला सकते हैं, उस पर बातें ब्रेक फ्री में। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आपके भी रोंगटे खड़े हुए या नहीं, मेरे तो हो गए। वाकई ऐसा भक्ति गीत जब आप सुनते हैं, हम सभी सुनते हैं, तो जो है दिल में जोश, उमंग, बहुत सारी चीज़ें भर जाती है और इतना ज़्यादा गर्व महसूस होता है हमें अपने संस्कृति पर, हमें अपने भारत देश पर, और इस जज्बे पर, इस भक्ति पर, और इस कदर, इस तरह की भक्ति शायद ही कहीं देखने को मिलती है जो हमें गणेशोत्सव के दौरान महसूस होती है अपने आसपास। ब्रेक फ्री चल रहा है 107.1 एफएम रेनबो पर, और दोस्तों बात हम कर रहे हैं उस आज़ादी के समय की, यानी जब आज़ादी नहीं मिली थी, हम आज़ाद नहीं थे और आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, उस समय की बात मैंने छेड़ी आज। दोस्तों हम बात कर रहे थे लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक की, और दोस्तों उनका मानना एक ही था, उनका मंत्र एक ही था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने सोचा कि अगर सीधे देश की बात करेंगे तो गोरे अफसर जेल में डाल देंगे और काम अधूरा रह जाएगा, क्यों ना बाप्पा के पंडाल को ही क्रांति का घर बना दिया जाए। तो चलिए रेडियो के टाइम मशीन में चलते हैं साल 1893 में। हाँ, हालांकि उतने पुराने गाने तो आपके लिए प्ले नहीं होंगे, नहीं होंगे, लेकिन वहाँ की एक ऐसी कहानी आप सभी को सुनवा रही हूँ, पुणे के पंडाल की, जहाँ एक युवा शंकर अपने भीतर के डर से ब्रेक फ्री करने की, आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था। बस थोड़ा सा इंतज़ार, एक गाना, एक क्विक कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद लौटूंगी मैं लेकर के ये कहानी आप सभी के लिए। बहरहाल आप सभी के लिए

ये गाना जो आपको अगेन एनर्जी से भर देगा, बहुत ज्यादा आपके अंदर ऊर्जा जो है ये संक्रमित करेगा। हाँ, ये गाना जो है अपनी ऊर्जा आपको देगा। सुनिए, बने रहें 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, ब्रेक फ्री चल रहा है। मैं हूं वैशाली और बातें कर रहे हैं हम ब्रेक फ्री करने के बारे में, आजाद होने के बारे में। दोस्तों, आजादी जितना ऐसा लगता है ना कि मोटा सा एक शब्द है, बहुत भारी सा है, या कभी कभी किसी को ऐसा भी लग सकता है कि भाई बहुत सरदर्द भरा है। यानी कि अगर आप ऊपरी पोजिशन पर हो लाइफ में, या फिर आप कोई भी फैमिली चला रहे हो घर पर या ऑफिस में, तो भाई बात ऐसी है कि शायद ऐसे शब्द आपको बहुत भारी लगे कि भाई लोगों को आजादी चाहिए। क्या आजादी ऑलरेडी नहीं है? क्या लोग आजाद नहीं है कि भाई क्या आपको दबा के रखा हुआ है? आप क्या दबे कुचले हैं? ऐसा लग सकता है। और भाई जो जूनियर हैं, जो यंग है, उन्हें ये लग सकता है कि भाई यार बड़ों को इतनी आजादी है, ये लोग जो चाहें वो कर सकते, यही लोग तय करते हैं हम क्या करें ना करें, हमें कब आजादी मिलेगी। तो देखिए, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं या नहीं। तो ये जो शब्द है छोटा सा शब्द, लेकिन कई लोगों को भारी लग सकता है। उसको भारी लग सकता है जिससे मांगी जाती है, और उसे भी भारी लगता है जिसे लगता है उसे नहीं दी जा रही। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी शंकर की, जो जा पहुंचा पुणे के उस पंडाल में, और वो भी उस सोच से गुजरने लगा जिस सोच से लोकमान्य तिलक शायद गुजरे होंगे कभी किसी समय। शंकर जो है भगवान गणेश विघ्नहर्ता जो है उनके वहां से गुजर रहा था, और उसके मन में ये ख्याल आया कि वो काम कर रहा है, घर पर भी उसके ऊपर बहुत सारा बोझ है, कर्जे का बोझ है, कमाने का बोझ है। वो सोच रहा था कि उस जमाने में जो तिलक रहे होंगे या और भी लोग रहे होंगे, इन्होंने कैसे समाज में सुधार किया होगा, जबकि उनकी अपनी निजी जिम्मेदारियां भी तो रही होंगी। ऐसा सोचते हुए गुजर रहा था वो, लेकिन कुछ प्रेरणादायी शब्दों ने उसकी राह को बदल दिया, उसकी सोच को बदल दिया। वो सोच रहा था कि देश प्रेम या देश के लिए कुछ करना, यानी कि अपनी जो मूल जिम्मेदारियां हैं बतौर बेटा, बतौर एक इंसान, वो शायद पूरी नहीं कर पाएगा। लेकिन नहीं, उसकी ये सोच जो थी वो गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी पूरी तरह से सही नहीं थी। पर उसने कैसे ब्रेक फ्री किया, क्या हुआ, जानने के लिए बस बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स। और दोस्तों, क्योंकि हम उत्सव मना रहे हैं, तो चलिए कुछ खुशी भरे गाने आप सभी को सुनवा दे। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो। ब्रेक फ्री चल रहा है और बातें हो रही हैं आज़ाद होने की और कई सारी चीज़ें, और हम क्योंकि खुशियां भी मना रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द अच्छी अच्छी हो रही हैं। और अभी गणेशोत्सव चल रहा है तो हमने गणपति बाप्पा के वंदना में जो गाने हैं वो सुने, और फिर थोड़े उत्सव वाले और फिर थोड़े से बिंदास और बेबाक वाले गाने भी आपको सुनवाए हमने इस घंटे। तो दोस्तों, बेसिकली ब्रेक फ्री होने का मतलब क्या होता है? ऐसे लगने में, सुनने में तो काफी भारी लगता है ना। और आजादी के बारे में मैंने बात की कि भाई इतना सा शब्द है, किसी किसी के लिए बहुत भारी लगता है क्योंकि उसे चाहिए, तो उसे लगता है अरे कब मिलेगी मुझे, इतनी बड़ी चीज है। और किसी किसी को लगता है कि भाई यार क्या है ये, इन्हें क्या आजादी नहीं मिल रही है, इतनी सी चीज भी हम नहीं कर रहे। तो किसी के लिए ये चीज इतनी बड़ी और किसी के लिए छोटी मामूली सी है, आम सी है। लेकिन सोचिए, जब हम आज़ाद नहीं थे तब ये कितनी बड़ी बात थी, हमारी अपनी स्वतंत्रता, हमारी अपनी आज़ादी बहुत बड़ी बात थी। और मैंने आपसे बात की शंकर की, जो पुणे में गणपति पंडाल से गुजर रहा था और उसके मन में यही सोच विचार चल रहे थे कि भाई उस जमाने में लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक ने किस तरह जो है मैनेज किया होगा, क्योंकि वो और बाकी स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनकी अपनी निजी जिंदगी भी थी, वो अपनी निजी जिंदगी से खुद जूझ रहा था। और तब जब वो इस पंडाल से गणेशोत्सव के गुजर रहा था, उसके मन में ख्याल आया कि कैसे इन्होंने किया होगा। तब उसे एक बुजुर्ग मिले और वो समझे कि इसकी कोई दुविधा है, उससे बातचीत की और फिर उन्होंने उससे कहा कि भाई तुम्हारी जो भी दुविधा है मैं समझता हूँ और ये सही बात है, तुम कुछ ना कुछ जरूर उत्सव से जुड़ी हुई बातें सोच रहे हो और साथ ही साथ तुम्हारी कोई अपनी परेशानी है। तो उस समय शंकर बोल पड़ा, जी हाँ मैं यही सोच रहा था कि उस जमाने में स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरह से निभाया होगा, अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ देश की आज़ादी का सपना सिर्फ देखा नहीं, उसे साकार करने के लिए तरह तरह की चीज़ें भी की और इतना कुछ किया, अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया। तो ये सारा कुछ कैसे मुमकिन है? तभी वो बुजुर्ग शंकर से बोले कि बेटा देखो, अभी फिलहाल देश तो हमारा आज़ाद है ना, देश के लिए अच्छा करना है ना, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम अगर सही तरीके से कर लो तो देश को खुशहाल रखने में तुम अपना योगदान दे पाओगे। वो सोच में पड़ गया, नहीं समझ पाए तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम एक अगर अच्छे नागरिक, अच्छे पिता, अच्छे बेटे, अच्छे पति बनते हो, अपने कर्तव्य निभाते हो तो देश को आगे बढ़ने में से मदद ही मिलेगी। यही अगर तुम बेकार बैठे रहे, अगर तुमने अगर पैसे ना कमाए और फिर खर्च ना किए तो देश की आर्थिक स्थिति का, आर्थिक एक सिस्टम का भी तुम हिस्सा नहीं बन पाओगे। तुम्हारी अपनी आर्थिक स्थिति अगर तुमको सुधारनी है तो आपको कुछ ना कुछ अलग अलग करना होगा और आगे बढ़ना होगा, और वैसे ही तुम अपने कर्तव्य, जो निजी कर्तव्य है उनको भी निभा पाओगे और देश के इस सिस्टम का, जो देश को आगे बढ़ा रहा है, उसका एक हिस्सा भी बन पाओगे। आधुनिक युग में ये देश सेवा से कम नहीं है। और अगर मान लो तुम तरक्की कर गए, अगर धीरे धीरे आगे चलकर तुमने कोई अपनी स्टार्टअप शुरू की, अपना कोई व्यवसाय कारोबार शुरू किया और उसमें तुम और लोगों को अगर काम देने लगे तो वो लोग तुम्हारी वजह से कमाने लगेंगे, उनके घर चलेंगे, और ऐसा ही करते करते तुम देश

सेवा और देश प्रेम का हिस्सा बन जाओगे। इतनी सी आसान सी चीज थी उस दिन शंकर समझ पाया और वाकई वो प्रेरित हुआ कि आगे चलकर कुछ अच्छा और बड़ा करना है। उस जमाने में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, इस जमाने में वो करना मतलब आपके देश के प्रगति के लिए काम करना, क्योंकि आज़ादी हमें मिल चुकी है और आज़ाद रहने के लिए, सिर्फ आज़ादी नहीं शक्तिशाली बनने के लिए पूरे विश्व में ज़रूरी है कि हम आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से हर रूप से हम सशक्त हो। और यही शंकर ने ठान लिया कि अब मुझे आगे बढ़कर अपने देश को सशक्त करने में एक योगदान देना है। क्या सोच थी उन बुजुर्ग की और कितना उन्होंने इसे जो है प्रेरित कर दिया शंकर को। तो आप सभी इन बातों से, इन चीजों से प्रेरित हो और आगे बढ़े जीवन में, यही मेरी भी और हमारे एफएम रेनबो की आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं इस गणेश उत्सव। बने रहे, सुनते रहे 107.1 एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: 12:28 हो चुके हैं, आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। वे भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक थे। ये दिवस हर वर्ष 15 सितंबर को विश्वेश्वरैया के योगदान को याद करने और राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों की भूमिका को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नीति आयोग के सदस्य डॉ आर बालासुब्रमण्यम ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवीय संवेदना का विकल्प नहीं हो सकती। नागपुर की सर विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था के 24वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने स्नातकों से आह्वान किया कि वे शिक्षा पूरी करने के बाद उससे प्राप्त ज्ञान और कौशल का उपयोग संवेदनशीलता के साथ समाज की सेवा के लिए करें। मुख्य समाचारों में आगे, पश्चिम बंगाल में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने नंदीग्राम से हसी रानी रथ और रेजीनगर से सखारव सरकार को उम्मीदवार बनाया है। नंदीग्राम सीट सुवेंदु अधिकारी के भवानीपुर सीट बरकरार रखने और रेजीनगर सीट हुमायूं कबीर के दोनों सीटों से चुनाव जीतने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव के लिए मतदान 6 अक्टूबर को होगा जबकि मतगणना 9 अक्टूबर को ही की जाएगी। मुख्य समाचारों में आगे, अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं वाले नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। म्यूजिक कैफे के लिए बने रहें 107.1 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का 107.1 FM रेनबो और साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आप सभी का धन्यवाद कि आप बने हैं, जुड़े हैं, बने रहे 107.1 FM रेनबो पर। दोस्तों, म्यूजिक कैफे शुरू हो चुका है और बात मैं करना चाहूंगी टांगे की। टांगे की बात क्यों करनी है, बस यूं जब इतिहास में थोड़ा पीछे चली गई थी मैं पिछले घंटे और बात कर रही थी गणेश उत्सव की, आज़ादी के लड़ाई की और ब्रेक फ्री करने की। उस समय मेरे जहन में ये भी बात आई कि उस ज़माने में देखिए वो सारे गाने होते थे ना जो टांगे पर बेस्ड हो, या फिर जैसे कि बस में चल रहे हैं तो चलते चलते भागते भागते, गाड़ियों में भी तो गाने बने हैं और सिर्फ फिल्माए नहीं गए, यानी बाकायदा उसका जो एक साउंड इफेक्ट होता था वो भी होता था कुछ गानों में। तो मैंने सोचा कि भाई टांगे वाली चीज़ें जो है वो उतनी पुरानी भी नहीं है। बड़े होते समय मैंने मुंबई के आसपास जो है ये टांगे देखे हैं और खासकर जो सारे लोग मुंबई के मेन एरिया में रहे हैं उन्हें तो पता ही है कि मरीन ड्राइव पर टांगे चलते थे और भी जगहों पर चलते थे, कभी कभी गेटवे ऑफ इंडिया के वहाँ पर, वहाँ के सड़कों पर भी चलते थे। तो ये जो एक फीलिंग है ना ये बहुत ही खास है। ये टांगा गाना मैं क्या ही कहूँ। अब देखिए इसे टोंगा भी कहते थे इसीलिए कुछ लोग जो है टांगा कहते हैं, कुछ टांगा कहते हैं। अब भाई जो भी कहना है आप कह लीजिए, अब घोड़ा गाड़ी कहना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मुझे याद है बचपन में हम उसे घोड़ा गाड़ी ही कहा करते थे। तो घोड़े गाड़ी पर जो एक सैर होती थी ना इतनी मज़ेदार होती थी, एक तो वो घोड़े के टापों की आवाज़।

आवाज टक टक टक टक इस तरह की आती थी और उसके साथ साथ जो हवा चलती थी भाई वाह, और घोड़े की जो जुल्फे थी वो हमारे जुल्फों से भी सुंदर थी तो बहुत मजेदार होता था। और वाकई यानी कि हाँ, ये जो है कभी कभी एनिमल क्रुएल्टी के अंतर्गत भी आ सकता है, लेकिन उस चीज को थोड़ा साइड रखे और प्यार से जो अपने घोड़ों को रखते थे उन डांगे वालों की बात करें तो भाई वो नज़ारा बहुत ही गजब होता था और वो एहसास भी। तो हम तो वक्त में आगे चले आए हैं, लेकिन चलिए धीरे धीरे वक्त में फिर से थोड़ा पीछे चले जाते हैं। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: सुबह का हर पल जिंदगी दे आपको।
1: तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा।
0: दिन का हर लम्हा खुशी दे आपको।
2: इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का।
0: जहाँ गम की हवा छू के भी ना गुजरे, खुदा वो जन्नत सी जमी दे आपको। ये जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए 107.1 FM रेनबो के संग, दिल से दिल तक।

म्यूजिक कैफे चल रहा है 107.1 एफएम रेनबो पर। बातें हो रही है टांगों की भाई, और गाने आपको टांगे वाले बहुत कम मिलेंगे जो बाद में आए, क्योंकि पहले वो हो चुका था और टांगे कम होने लगे थे, लेकिन फिर भी उसका जो एक थ्रिल था ना वो अलग ही था। छोटे बच्चों को पूछिए भाई कि टांगे का थ्रिल क्या होता है। कहीं कहीं होता है, आजकल मिल जाता है, लेकिन बिल्कुल मैं मानती हूँ कि हमें जो है घोड़ों के साथ, बाकी जानवरों के साथ बिल्कुल अच्छा और बेस्ट व्यवहार करके उनको अपने परिवार के सदस्य की तरह रखना है और आराम से काम कराना है। देखिए, अगर जानवर काम नहीं करेंगे, अगर उन्हें हम व्यस्त नहीं रखेंगे, तो ऑफकोर्स जो उनके अंदर की एनर्जी है वो कहाँ यूज़ होगी, क्योंकि जंगलों में तो आप घोड़ों को वगैरह छोड़ नहीं सकते। तो किसी अच्छे चीज़ के लिए उनका उपयोग करना अच्छा है, बिल्कुल मानवीय स्थितियों में और सारी इस तरह के एनवायरनमेंट में जो हम खुद के लिए चाहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अस्तबल रखते हैं और बहुत प्यार से अपने घोड़ों को पालते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल तय ही है। लेकिन अगर टांगों की बात करूं तो वाकई बहुत ही मज़ेदार रहा कि हिंदी फिल्मों में बहुत लोकप्रिय गाने रहे टांगों के ऊपर। एक तो मैंने आपको अभी सुनवाया हौले हौले चलो मोरे साजना, क्या गाने थे, और उसके अंदर जो बीट्स भी घोड़ों के टापों की डाली गई ना, वो लाजवाब और कमाल थी। वो हमें समय में पीछे ले जाते हैं और इस कदर बिल्कुल मुझे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हवाएं एक्चुअली मेरे फेस पर आ रही है, मेरे चेहरे पर हवाएं आ रही है, मेरे बाल उड़ रहे हैं। ये एक एहसास आता ही है जब आप ये कमाल के गाने सुनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आपको कुछ और कमाल के गाने सुनाते हैं दोस्तों। ये थोड़ा 50s के एंड एंड के गाने हैं, फिर बाद में हम बढ़ेंगे शोले की तरफ, जिसमें भी है ही और टांगा तो आइकॉनिक रहा शोले फिल्म में। तो भाई आगे बढ़ते हैं और दो गाने 57 के आसपास की, और उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे शोले फिल्म की तरफ। 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

वाह मजा आ गया, और बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि तांगे की सैर कर रही हूँ मैं, क्योंकि महमूद साहब ने जो इफेक्ट्स भी इसमें करवाए हैं इस गाने में, क्योंकि इन्हीं पर फिल्माया गया है, तो डेफिनेटली उन्होंने एक्शन तो किया ही है और गाना तो बहुत ही मजेदार और दिलचस्प। जितना कुछ कहें उतना कम ही है दोस्तों। अब देखिए, जैसे कि 90s आते आते तो तांगे वाले गाने बनना तो बंद ही सा हो गया, क्योंकि उसके बाद तो वो रेलेवेंट था नहीं ना, तो इसलिए फिर अगर तांगे ही नहीं है तो तांगे पर गाने बनाकर क्या होगा, है ना। तो दोस्तों ये बात रही, और वाकई ये अच्छी बात भी है, खुशी की बात भी है कि तांगे अब नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेटली, क्योंकि घोड़ों को भी इससे तकलीफ होती है, शहरों में हमारी जो सड़कें होती है, जो वातावरण होता है, तो इसमें इस पॉल्यूशन में वगैरह घोड़ों को दौड़ाना वगैरह ये सारी चीज़ें तकलीफ दे ही है। और दूसरी बात ये भी है कि सड़क स्वच्छ भी नहीं रह पाते लोगों के यातायात के लिए भी, तो बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जिस वजह से हम सभी इस बात को मानते हैं कि अच्छा ही है कि अब तांगे नहीं है, लेकिन एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग तो आती है ना। तो सब कोई हसीना जब रूठ जाती है, ये गाना शोले फिल्म का किसे याद नहीं होगा भाई। इसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और उनकी मशहूर घोड़ी धन्नो जो है, इसके तांगे पर सवार होकर उन्होंने रोमांटिक गाना गाने की कोशिश की, यानी थोड़ा सा रोमांस और थोड़ा सा छेड़खानी थोड़ी सी, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मज़ेदार। और देखिए, उससे पहले हम सभी जैसे जानते हैं ओपी नैयर साहब ने जो है ये तांगे वाले जो गाने हैं इनको इंट्रोड्यूस किया, और भाई वो एकदम मैं कहूँगी कि क्लासिक बन गए हैं वो गाने, और हमेशा हमारे जहन में रहते हैं, हमें याद होते हैं ये गाने, और हम उन्हें मिस भी करते हैं, सुनना एंजॉय भी करते हैं, और एक ब्रीजी रोमांटिक नंबर आज के दिनों में इन्हें कहा जा सकता है। तो चलिए कुछ और गाने आपको सुनवाते हैं, और फिर ठीक 12:30 बजे आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। तो बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

ट्रक ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त ऊपर।

क्यों भाई बादल क्यों भाई मोदी, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, तुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर।

आइए हमेशा की तरह पहले सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। लिखा है, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, उसमें समय, धैर्य और तपस्या की जरूरत होती है। धन्यवाद आप दोनों का। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने लिखा है, प्रिय उद्घोषक जी मन से नमस्कार, आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और ज्ञानवर्धक बात बताई। आपका संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद। करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू ने लिखा है, उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें भरपूर मनोरंजन तो होता ही है और इससे हमें सीख व प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आपका भी संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में अब आप सबका स्वागत है। इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कुछ घटनाएं और कुछ लोक कथाएं। ये लोक कथाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुनकर यदि आप कभी किसी पेड़ के पास से गुजरें तो आप उसे सिर्फ एक पेड़ नहीं समझेंगे, आपके देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपने अक्सर उत्तराखंड के चिपकू आंदोलन और उससे जुड़ी गौरा देवी के बारे में जरूर सुना होगा। इस पर हमारा कार्यक्रम भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे चिपकू आंदोलन मूल रूप से कब शुरू हुआ। आज की कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव खेजड़ली की और एक ऐसी महिला की जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन तक न्योछावर कर दिया। कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। सन 1730 की बात है। राजस्थान की गर्म और रेगिस्तानी धरती, चारों ओर रेत और उस धरती पर जीवन का सहारा बने हुए थे खेजड़ी के पेड़। एक दिन गांव में कुछ लोग पहुंचे, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। उन्हें वहां के राजा अभय सिंह के द्वारा पेड़ों को काटने का आदेश मिला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गांव की एक महिला उनके सामने आ खड़ी हुई। उसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने पेड़ को अपनी बाहों में भर लिया और पेड़ काटने वालों से कहा, पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना होगा। जरा सोचिए श्रोताओं, क्या दृश्य रहा होगा। सामने कुल्हाड़ी लिए लोग और दूसरी ओर एक निहत्थी महिला। पेड़ काटने वालों ने उसे धमकाया, लेकिन अमृता देवी पीछे नहीं हटी। उनकी तीन बेटियां भी अपनी माँ के साथ खड़ी हो गईं और फिर जो हुआ वो भारतीय पर्यावरण इतिहास की अमर घटना बन गया। अमृता देवी का दृढ़ संकल्प देखकर गांव के लोग भी आने लगे और एक एक करके पेड़ों से चिपकने लगे। किसी ने कहा, ये पेड़ हमारे पशुओं का चारा है। किसी ने कहा, ये हमारे जीवन का सहारा है। और किसी ने शायद ये महसूस किया कि पेड़ कटेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी कट जाएगा। श्रोताओ, इसके बाद शुरू हुआ क्रूर संहार। इस बेहद दुखद आंदोलन में 363 बिश्नोई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जब ये समाचार महाराजा तक पहुंचा तो वे सन्न रह गए और शोक में डूब गए। अंततः खेजड़ली क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। साथियों, आज से लगभग 300 साल पहले, जब पर्यावरण संरक्षण जैसे शब्द आम बातचीत का हिस्सा भी नहीं थे, तब इन लोगों ने प्रकृति के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हम आज कहते हैं पेड़ बचाओ, पानी बचाओ। सोशल मीडिया पर, अखबारों में ये संदेश भरे पड़े हैं। बड़ी बड़ी कार्यशालाएं होती हैं, उपदेश होते हैं और जिसमें लोग कहते हैं पर्यावरण बचाओ, लेकिन अमृता देवी ने केवल कहा ही नहीं था, उन्होंने करके दिखाया था। अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी खामोशी में किए गए कार्य बोलते हैं। तो श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि अगली बार जब आप किसी पेड़ की छाया में बैठें, उसके फल खाएं, उसकी ठंडी हवा को महसूस करें, तो एक पल के लिए राजस्थान की खेजड़ली गांव की उस महिला अमृता देवी बिश्नोई को जरूर याद कीजिएगा, जिनके लिए पेड़ केवल लकड़ी मात्र नहीं थे, लेकिन वो जीवन का आधार थे। आइए सोचें, पेड़ हमारी सांस हैं, हमारे लिए शीतल छाया हैं, वे हमारे जल और मिट्टी के रक्षक हैं और सबसे बढ़कर वे आने वाली पीढ़ियों की विरासत हैं। तो आज हम उमंग कार्यक्रम में मन की उमंग से चलते चलते एक छोटा सा संकल्प क्यों न लें, एक

0: पेड़ को केवल लगाएंगे नहीं, उसे बड़ा भी करेंगे और उसे बचाएंगे भी। एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तर्ज पर आज हम उमंग कार्यक्रम की ओर से एक नया नारा देना चाहेंगे, पेड़ लगाओ पेड़ बढ़ाओ पेड़ बचाओ। और शायद ही यही चिपको आंदोलन की मूल माता अमृता देवी बिश्नोई को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमृता देवी की कहानी पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में पेड़ बचाने के लिए अपना जीवन देने का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। बता दें, देश ने उनके अतुल्य बलिदान को नहीं भुलाया। आज भारत सरकार का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर वन और वन्य जीवन संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी प्रस्तुति जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्यपुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है द क्रो। कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में संदेश दिया गया है कि हम अपने मूल स्वरूप में ही अच्छे हैं, किसी और से हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
3: हेलो मैम।
1: हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू मैम?
1: आई एम गुड, थैंक यू सो मच वान्या। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विथ यू। आर यू रेडी?
2: यस
3: मैम।
1: ऑलराइट, यू ऑल नो दैट pets are special members of our family, isn't it?
2: Yes,
3: pets are so lovely.
1: Right, Soham.
4: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
1: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
4: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
1: Wow, that's good. And what about you, Navya?
5: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
1: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
6: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
1: Oh, that's so exciting, isn't it?
2: Yes, ma'am.
1: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
2: Yes, ma'am.
1: Can you name some birds?
3: Sparrow.
1: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
4: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
1: Yes, peacock is a colorful bird.
6: Ma'am, parrot.
1: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
7: Any guesses?
1: Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
2: Yes, ma'am.
3: It will be fun.
1: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black. As you know. How to be beautiful. He wanted to know. Colorful feathers. He wanted to grow. He found one peacock feather. He stuck it.
2: He

0: Tell me the color. Right, right. Now, Soham will tell.
1: Green.
2: Yes. It is green. Yes.
0: Right. Now, listen to the sound of parrot. The next bird is sparrow. Now, tell me the color. Who will tell?
2: Me.
0: Navya, Vahanya, Soham.
3: Me.
0: Lavish.
4: I'm brown.
0: You're right. Sparrow has mostly three colors: brown, white, and
2: black.
0: Right.
3: Crow is also black, ma'am.
0: Yes, black is a beautiful color. And now listen to how crow sounds.
2: Ah! Ah!
0: Now you all know about the sounds of birds.
2: Great.
1: Yes, ma'am.
0: So children, did you like the poem?
2: Yes, ma'am.
5: We loved it.
0: Okay. And the song and the little game of birds?
2: Yes, ma'am.
0: Then let's clap for each other. Yay!
6: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सिस्टर निवेदिता। ये कार्यक्रम बंगाल की उल्लेखनीय शिक्षाविद भगिनी निवेदिता के जीवन और उनके योगदान के बारे में जानकारी देता है। कार्यक्रम बताता है कि किस प्रकार वे श्रीमती मार्गरेट नोबल के रूप में भारत में आईं और स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भगिनी निवेदिता कहलाईं।
7: उत्तरी कलकत्ता के बाग बाजार मोहल्ले में एक विद्यालय है। श्री रामकृष्ण शारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल। वैसे तो हमारे देश में दूसरे विद्यालयों की ही तरह ये भी एक साधारण सा विद्यालय है, लेकिन कुछ अर्थों में ये बड़ा असाधारण भी है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस विद्यालय का प्रारंभ कुछ असाधारण लोगों के द्वारा बड़ी ही असाधारण परिस्थितियों में किया गया था। सुनना चाहते हो इसकी कहानी?

0: उनके साथ एक अंग्रेज मेम साहब भी है।
1: अरे तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा करके आया? जरा मेरी शॉल तो दे लो।
0: अच्छा बाबू।
1: और सुन
0: जी,
1: मालकिन से कह देना कि तैयार रहेगी, हैं? भगिनी निवेदिता
0: हैं?
1: अरे वही अंग्रेज मेम साहब, शायद तेरी मालकिन और चुन्नी दीदी से मिलना चाहें।
0: क्या कह रहे हैं बाबू, मालकिन भला मेम साहब से कैसे बात करेंगी? वो क्या अंग्रेजी पढ़ी लिखी है?
1: इसकी चिंता मत कर माधो, ये मेम साहब दूसरी मेमो जैसी नहीं है।
0: अच्छा?
1: हाँ, बंगला बोल लेती है।
0: ओ।
1: बड़ी नेम धर्म वाली है, स्वामी विवेकानंद की खास शिष्या है।
0: अच्छा?
1: अपना घर बार छोड़कर 100 समुंदर पार से यहाँ आई है, हमारी लड़कियों को पढ़ाएंगी, यहाँ कलकत्ते में एक कन्या पाठशाला खोलेंगी।
0: वो तो ठीक है, पर बाबू।
1: अरे दुष्ट, स्वामी जी को दरवाजे पर खड़ा कर रखा है और यहाँ पर कर रहा है, जा भाग यहाँ से।
0: अच्छा।
1: पहले मैं उन्हें फीतर ले आऊं। आइए आइए स्वामी जी, भीतर आइए। धन्य भाग है हमारे जो आपकी चरण रज से मेरा घर पवित्र हुआ।
2: अरे अरे, ये क्या करते हैं बोस बाबू? उठिए उठिए, माँ काली आपका कल्याण करे, इनसे मिलिए। यही वो आयरिश महिला है मिस मार्गरेट नोबल, जिनके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी।
1: कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है मिस नोबल।
3: धन्यवाद बोस बाबू, किंतु आप यदि मुझे स्वामी जी के दिए हुए नाम से पुकारें तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी।
1: यदि ऐसा है तब मैं आपको सिस्टर निवेदिता ही कहूँगा। आइए स्वामी जी, यहाँ बैठिए। आप भी बैठिए सिस्टर।
3: धन्यवाद।
2: अब बताइए बोस बाबू
1: जी,
2: क्या सलाह है? इधर बाग बाजार में स्कूल खोलने पर यहाँ के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे या?

0: नहीं?
1: देखिए स्वामी जी, मैंने इस बारे में कई लोगों से बात की है। जो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, वो भी समाज के डर से उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है।
2: अरे, अगर कोई आदमी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता है तो इसमें समाज का क्या नुकसान है?
1: नुकसान तो है ही सिस्टर। पुराने लोगों को डर है कि यदि लड़कियां पढ़ गईं तो फिर अपनी बुद्धि से सोच सकेंगी, अपना भला बुरा समझ सकेंगी, तब वे समाज से अपनी दुर्दशा का कारण पूछने लगेंगी, समाज की हर गलत सही और उल्टी सीधी प्रथा को मानने से इनकार करने लगेंगी, तब फिर इस अंधे समाज का क्या होगा? समाज में तो हाहाकार मच जाएगा ना।
2: कैसी बातें कर रहे हैं आप बोस बाबू? जब परिवार की बहू बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो उससे तो पूरे समाज का लाभ होगा ना।
1: देखिए सिस्टर, ये बात मैं समझता हूँ, कुछ और पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न तो इस बात को समझता है और न मानने को तैयार है।
2: तब क्या ये स्कूल नहीं खुल सकेगा?
0: खुल सकेगा और खुलेगा। जिस कार्य के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, माँ बहन भाई मित्र सहयोगी सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हो, तुम्हारा वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा, तुम्हारा विद्यालय अवश्य खुलेगा।
2: लेकिन वो शुभ दिन कब आएगा स्वामी जी?
0: उतावली ना हो निवेदिता, हर काम का समय निश्चित होता है। हाँ तो बोस बाबू जी, यहीं बोसपाड़ा में अगर कोई छोटा मोटा मकान किराए पर मिल जाए तो उसमें निवेदिता अपना विद्यालय खोल सकेंगी।
1: मकान की व्यवस्था आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए स्वामी जी, किंतु मेम साहब के पास घर का कामकाज करने के लिए कोई स्त्री तैयार होगी या नहीं इस विषय?
0: वो व्यवस्था हो गई है। माँ शारदा मणि के पास एक वृद्धा ब्राह्मणी आती थी, गोपाल की माँ, उससे माँ ने कहा तो वो निवेदिता का खाना बनाने और घर द्वार संभालने के लिए राजी हो गई।
1: चलिए, तब तो ये चिंता भी दूर हुई। अब केवल आपके लिए छात्राओं की व्यवस्था कर ली है। वैसे एक छात्रा तो मेरे घर में भी है, मेरी छोटी लड़की चुन्नी। मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ पढ़ना लिखना सीख ले, पर उसकी माँ किसी भी तरह तैयार नहीं होती। कहती है कि अगर चुन्नी पढ़ लिख गई तो फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा।
2: अरे वाह, ये तो उल्टी बात हुई। आजकल के पढ़े लिखे युवक तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी पढ़ी हो। बोस बाबू, आप मुझे एक बार मिसेस बोस से मिलवा सकते हैं? शायद मैं उन्हें चुन्नी को स्कूल भेजने के लिए राजी कर सकूं।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको भीतर ले चलता हूँ।
0: जाओ निवेदिता, शायद ये चुन्नी ही तुम्हारी पहली शिष्या हो।
3: इस तरह स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से और बलराम बोस जैसे कुछ और समझदार लोगों के सहयोग से 13 नवंबर 1898 को बाग बाजार के बोसपाड़ा लेन के एक छोटे से मकान में निवेदिता ने अपनी कन्या पाठशाला का शुभारंभ किया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा मणि भी इस अवसर पर उपस्थित थी। निवेदिता अपनी थोड़ी सी छात्राओं को केवल लिखना पढ़ना ही नहीं अपितु चित्र बनाना, सीना पिरोना, हिसाब किताब रखना, सभी कुछ सिखाकर उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहती थी। लेकिन परंपरागत शिक्षा के आदि लड़कियों के माता पिता शिक्षा के इस ढंग को बिल्कुल समझ नहीं पाए।
4: गुड मॉर्निंग गर्ल्स।
5: गुड मॉर्निंग दीदी।
2: ये सुभाषिनी आज फिर नहीं आई, क्या बात है, बीमार तो नहीं पड़ गई? चारू, तुम गई थी उसके घर?
6: हाँ दीदी, आज मैं उसके घर गई थी। उसकी माँ कहने लगी, इश, ये कैसा स्कूल है जी तुम्हारा, वहाँ हम लड़की को पढ़ने भेजते हैं या खिलौनों से खेलने?
2: फिर तुमने क्या कहा?
6: मैंने कहा कि हमारी निवेदिता दीदी खिलौनों से खेलने को कहती हैं, और फिर ना जाने कैसे खेल खेल में हमें बहुत सारी बातें सिखा देती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। इस पर वो बोली कि आज वो स्वयं आपसे मिलने आएंगी।
2: अच्छा ठीक है, तुम तो आज हमें अल्पना बनाकर दिखाने वाली थी ना चारू?
6: हाँ दीदी।
2: ये लो कागज और रंगीन पेंसिल, एक सुंदर सी अल्पना बनाकर उस पर अपना नाम लिखो। और चुन्नी, तुम मुझे कल वाली कविता सुनाओ तो।
7: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
6: दीदी, ये माशी माँ है, सुभाषिनी की माँ।
2: आइए आइए ना माँ, वहाँ द्वार पर ही क्यों खड़ी है, भीतर आइए ना।

0: जाते चारू, मासीमा के लिए एक आसन तो ले आ।
1: अच्छा दीदी।
0: नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ।
2: नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमारे विद्यालय की पहली अतिथि हैं, हम आपको ऐसे खड़े खड़े थोड़ी लौट जाने देंगे।
1: दीदी ये लीजिए आसन।
2: बैठिए ना माँ। सुभाषिनी कहती है आप बहुत सुंदर गाती हैं, आप हमारी लड़कियों को चंडीदास के एक दो गीत जरूर सुना कर जाइएगा।
3: किंतु मेरे गाने से इनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा।
2: क्या कहती है माँ, आप गीता भागवत का पाठ करती हैं तो उनसे आपको कुछ नहीं मिलता।
3: क्यों नहीं मिलता, जो गीता का उपदेश समझ ले उसका तो जीवन ही सुधर जाए।
2: वही तो मैं भी कहती हूँ, शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान थोड़ी है, शिक्षा का मतलब है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। आप जो घर में सुभाषिनी को अल्पना बनाना सिखाती हैं, उसे पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाती हैं, वो भी तो शिक्षा ही है ना माँ।
3: हाँ सो तो है,
2: मेरी लड़कियाँ जीवन के हर पक्ष से, हर रंग से शिक्षा प्राप्त करती हैं, मैंने इसीलिए ये स्कूल खोला है माँ।
3: अच्छा आजकल सुभाषिनी नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना उसकी?
1: तबीयत तो ठीक है।
3: अच्छा मेम दीदी अब मैं चलूंगी, कल से सुभाषिनी स्कूल आएगी और मैं देखूंगी आस पड़ोस की और लड़कियां भी राजी हो जाएं तो।
2: ये तो बड़ा उपकार होगा मुझ पर।
4: निवेदिता के सौम्य सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार से उनके विद्यालय की छात्राएं और आस पड़ोस की स्त्रियां बड़ी प्रभावित हुईं।

उन्होंने कलकत्ता में स्त्री शिक्षा का जो नन्हा सा दीप जलाया था वो बढ़कर एक अखंड ज्योति में परिवर्तित हो गया। पर निवेदिता सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं थी, वे चाहती थी कि भारत मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो, निर्धनता से मुक्त हो और विदेशी दासता से मुक्त हो। उनका घर बंगाल के कितने ही क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था और उस समय जब वंदे मातरम का उच्चारण भी अपराध समझा जाता था, निवेदिता के विद्यालय में प्रतिदिन सरस्वती वंदना के साथ वंदे मातरम का स्वर भी गूंजता था।

इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो और ठीक एक बजे आप सुनेंगे छत्रपति संभाजी नगर से दोपहर के समाचार और फिर 1:05 से आप सुन सकेंगे मुंबई केंद्र से हिट एंड हॉट।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का 107.1 मेगाहर्ट्ज़ वाला एफएम रेनबो, और आप हमें सुन सकते हैं 107.1 एफएम रेनबो को न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर, और साथ ही साथ आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर

ही और शुरू हो चुका है हिट एंड हॉट। आप सभी को रोजाना इस समय का इंतजार होता है, इस वक्त का, और क्यों ना हो, आपकी फरमाइशें हम प्ले करते हैं, आपकी दिल की बातें हम साझा करते हैं हमारे सारे श्रोताओं के साथ। और चूंकि गणेशोत्सव हम सभी मना रहे हैं, तो आप में से कुछ श्रोताओं के मैसेजेस शुभकामनाएं देते हुए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अपनी शुभकामनाएं देने के लिए, बने रहने के लिए। उत्सव में सभी बहुत व्यस्त है, उसके बावजूद आप FM रेनबो सुनने का समय निकाल लेते हैं, इसके लिए धन्यवाद देना बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, हमें मैसेज आया है शुभदा जी का, महेश भाटकर जी का, हितेंद्र दास जी का असम से, और प्रमोद चिंचोलकर जी, दीपा पालकर जी, पंकज मोहर जी, गोप परिवार और प्रकाश शिंदे इनका, अयाज चौधरी इनका भी हमें कॉल आया है। तो दीपा पालकर जी सबसे पहले इनका मैसेज हमने देखा है, तो ये लिखती है कि हमारे पूना में टांगा बहुत दौड़ते हैं, टांगे में बैठने का मजा ही कुछ और आता है। वाह क्या बात है। और भाई जैसे मैंने कहा आप सभी से कि कुछ लोग टांगा कहते हैं, कुछ टांगा कहते हैं, लेकिन खैर सही शब्द तो टांगा ही है। अब देखिए सही शब्द इस्तेमाल करने की बात अब मैंने क्यों की है ये भी आप सोच रहे होंगे। तो देखिए हम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं और 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाते हैं हम, लेकिन जो है पूरे 15 दिन जो है यानी 28-29 सितंबर तक हम जो है हिंदी भाषा को सेलिब्रेट करते हैं, हिंदी भाषा को मनाते हैं। तो ये सारी बातें हैं और साथ ही साथ भाई राजभाषा होने का एक दर्जा है हिंदी को, और कोशिश यही रहती है कि हम चाहे जिस भी भाषा के हों हम हिंदी भाषा बोलने की कोशिश करें, ताकि ये वो एक धागा है जो हम सारे देशवासियों को साथ पिरोए रखता है। तो कोई ना कोई एक कहते हैं ना कोई एक धागे की जरूरत होती ही है जो हम सभी को साथ बनाए रखे और बांधे रखे, जोड़े रखे, और यही काम हिंदी भाषा करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आप सभी के मैसेजेस भी शेयर करने वाली हूँ। तो दीपा पालकर जी ने तो ये लिखा हमें, साथ ही साथ पंकज मोहर जी के भी आज बहुत मैसेजेस हैं। शुभदा जी लिखती हैं कि हावड़ा ब्रिज का मधुबाला अशोक कुमार का ये क्या कर डाला सॉन्ग भी टांगे पर है और सुपर हिट है। यहाँ मुझे मैसेज हमारे और भी श्रोताओं के आए हुए हैं, मैं एक एक करके मैसेजेस पढ़ रही हूँ। महेश भाटकर जी ने जो है खास शुभकामनाएं भेजी है दिन की। यहाँ पर पंकज मोहर जी हमें लिखते हैं कि बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है, सारे हर शो को लेकर काफ़ी कुछ इन्होंने शेयर किया है, पर अगर मैं आखिर की बातें अगर इनकी देखूं तो इन्होंने लिखा है कि टांगे पर जो है प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, और वो भी चाहते थे कुछ गाने उनके यू नो पसंद के प्ले हो, वो हो गए। और साथ ही साथ इन्होंने और क्या लिखा है उस पर मैं ज़रा देख रही हूँ, गणेशोत्सव की शुभकामनाएँ दी हैं, और इन्होंने कहानी के बारे में जो शंकर की कहानी मैंने सुना है उनको बहुत अच्छी लगी। इन्होंने लिखा है कि अपनी जिम्मेदारी को बोझ नहीं समझना चाहिए और सिर्फ विचार करके कुछ हासिल नहीं होता, कुछ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए जिंदगी में। और अयाज चौधरी जी का भी हमें कॉल आया था और इन्होंने कहा कि उनको कहानी की एक अच्छी बात ये लगी कि किसी जमाने में जब आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे तब वो हमारे देश की आवश्यकता थी, और आज क्योंकि हम ऑलरेडी फ्री हैं, हम आज़ाद हैं, तो इसलिए ज़रूरी है हम अपने देश को सशक्त करें। तो ये बात जो मैंने साझा की थी अपने कहानी के जरिए उनको बहुत अच्छी लगी और उनके दिल को छुई, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये जो है एक कहते हैं ना कि समय की जो मांग है वो ये है कि हम अपने आप को स्ट्रांग बनाएं ताकि हमारा देश भी सशक्त बने। तो ये विचार उनको अच्छा लगा। अब और भी मैसेजेस मैं देख रही हूँ, गोप परिवार का हमें मैसेज आया है और उन्होंने अपनी फरमाइश भेजी है, तो वो हम प्ले करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। तो
और बातें थोड़ी देर बाद, बने रहे, सुनते रहे। वैदेही ने हमें ये मैसेज भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनका नाम लेना रह गया था क्योंकि गाना इन्होंने नहीं भेजा है, तो इनका संदेश ही पढ़ लेती हूँ। तो इन्होंने लिखा है कि एक तांगा अब भी नेरुल में चलता है और बच्चे जो है इंजॉय करते हैं यहाँ पर। प्री शूट वेडिंग, शादियों के प्री शूट के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और लिखती है कि टिटवाड़ा में ये लोग जो है तांगे की सवारी, घोड़ा गाड़ी की सवारी एंजॉय करते थे, और इन्हें सुनना था गाना और एक गाना प्ले हो गया तब तक, तो ये बात है। और इन्होंने साथ ही साथ मिच्छामी दुकड़म भी कहा है और ये संदेश भेजा है। हमारे सारे जैन बंधुओं का पर्युषण चल रहा है, तो आप सभी को जो है ये दिन भक्ति भाव में लीन हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और आप सभी को सुनवाते हैं गाने। तो दीपा पालकर जी की फरमाइश से शुरू करते हुए,

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, हिडन हॉट चल रहा है और आप सभी की फरमाइशें, कोशिश हो रही है कि एक एक करके प्ले की जाए। और अभी ये गाना जो आपने सुना, ये अय्याज चौधरी इनकी फरमाइश थी। और आगे हमारे कई सारे श्रोताओं के मैसेजेस हैं, दिग्दर्शन और कविता जो है अपनी फरमाइश लिख भेजते हैं और ये क्रिमिनल फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। फिरोज सिगनपुरिया, इन्होंने कहा कि जो है लोकमान्य तिलक जी की कहानी उन्हें बहुत बहुत पसंद आई और साथ में शंकर की कहानी, और लाइफ में उसने जिस तरह वो फिर आगे बढ़ा, वो समझ गया चीज़ें, ये उनको अच्छी लगी बात। और ये सुनना चाहते हैं, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। यशवंत अड़मुठे जी का भी हमें मैसेज आया था और इन्होंने नमस्ते लिख भेजा है, शुभकामनाएं भेजी हैं गणेशोत्सव की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर जो है प्रकाश शिंदे जी भी हमें मैसेज भेजते हैं और इन्होंने जो है गणेशोत्सव की शुभकामनाएं भेजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इन्होंने लिखा है कि राहें मुश्किल हो तो भी रास्ता मिल जाता है, जब मेरे गणपति बापा का आशीर्वाद मिल जाता है हर विघ्न टल जाता है, जीवन से पल भर में जब बापा के चरणों में ये सर झुक जाता है। वाह क्या बात है। और इन्होंने लिखा है कि एक्ट्रेस राम्या कृष्णन जी का जन्मदिन है, उन्हें जो है ढेरों शुभकामनाएं देनी है और साथ ही साथ उनके फिल्म के गाने भी इन्होंने लिख भेजे हैं जो इनकी फरमाइश है। यहाँ पर इन्होंने साथ ही साथ लिखा है कि हमारा दूरदर्शन जो है इसे

मचाना याद आता है आज भी वो बीता हुआ जमाना, शक्तिमान की वो उड़ान और मोगली का तराना, दूरदर्शन ने दिया हमें बचपन का सबसे हसीन खजाना। वाह क्या बात है। और लिखते हैं कि आज दूरदर्शन ने 67 साल पूरे किए हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आगे बढ़ते हुए मैं जो बाकी की फरमाइशें हैं ये प्ले करने वाली हूँ। और आप सभी का दिल से धन्यवाद। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा अपने गाने के लिए। अभी मैं आप सभी के लिए प्ले करने वाली हूँ हम बेखुदी में तुमको, और फिर आईना बता कैसे।

हिट एंड हॉट जारी है 107.1 एफएम रेनबो पर. मैं हूं वैशाली और आप सभी के मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और फिर एक बार आप सभी को गणेशोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं. आप 107.1 एफएम रेनबो को सुन रहे हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर, एफएम पर और साथ ही साथ आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी. अभी कुछ गाने बाकी है जो आप सभी के लिए प्ले होने हैं. और अभी से कुछ देर पहले यानी के समाचारों से पहले गोप परिवार झारखंड ने जो गाना भेजा था लिख कर के इनकी

फरमाइश है वो हमने प्ले की थी और साथ ही साथ साझा भी किया था, लेकिन शायद उनका उनसे मिस हो गया क्योंकि शुरुआत ही में मैंने बताया था कि उनका जो पूरा परिवार है ये बना हुआ है यहाँ पर और सुन रहे हैं हमें, ये सुन रहे हैं पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इनके परिवार में हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। तो धन्यवाद आप सभी का। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जैसे मैंने कहा था, प्रमोद चिंचोलकर जी ने भी हमें मैसेज किया है। ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून जी, और आज ऋषि पंचमी है और आज के दिन गजानन महाराज जिन्हें जीने समाधि ली थी, इस पावन अवसर पर जो है हिट एंड हॉट ये कार्यक्रम सुन भी रहे हैं और इन्होंने भेजी भी है एक फरमाइश, पर ये गाना जो है अवेलेबल नहीं है और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि दूसरा गाना हमें भेजिए, तो वो आपकी तरफ से अभी फ़िलहाल आया नहीं है और बाकी गाने प्ले होने का समय हो गया है। यहाँ पर मुझे मैसेज आया है TDM इनका जो है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, इन सब का, और कालका से और भी लोग जुड़े हुए हैं इनके ज़रिए जो है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, और इन्होंने जिस गाने की फरमाइश भेजी वो होठों पे बीती बात आई। कोशिश करूंगी मैं ये प्ले करूं आपके लिए, आप सभी के लिए। धन्यवाद कि आप बने हुए हैं। और मिंटू थॉमस जी का भी हमें मैसेज आया है और पूरा जो है परिवार इनका बना हुआ है, सुन रहे हैं ये सभी हमें। धन्यवाद आपका। और जी आगे बढ़ते हुए गुरमीत सिंह, मीता सिंह ये भी हमारे साथ जुड़े हुए साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से, आकांक्षा मनोज सिन्हा अहमदाबाद से बनी हुई है, भूल भुलैया फिल्म के गाने की फरमाइश करती हैं, बिल्कुल कोशिश करेंगे हम कि आपका गाना प्ले हो। और पंकज मोहड़ जी का गाना बाकी है नरसिम्हा फिल्म का जो मैं प्ले करने वाली हूँ बहुत जल्द। एक और बात साझा की थी हमसे प्रकाश शिंदे जी ने, बहुत ही फनी सी बात थी ये, इन्होंने लिखा था कि हमने भी पंढरपुर में टांगे में बैठकर जो है सफ़र किया है लेकिन हमारी दो टांगे सबसे बेस्ट हैं। जी वाह क्या बात है। तो ऐसे ही बस अपना ये जो है मजाकिया अंदाज और ये प्यार भरा जज्बा आप सभी बनाए रखें, बने रहें 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स।

हिट एंड हॉट चल रहा है और बस एक आखिरी गाना सभी के लिए प्ले होगा। उससे पहले बताना चाहती हूँ, ये थी प्रकाश शिंदे जी की फरमाइश और इन्होंने जो है बहुत सारी बातें लिखी थी और शुभकामनाएं भी भेजी थी इन्होंने एक्ट्रेस राम्या कृष्णन को, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है। टीम एफएम रेनबो मुंबई की तरफ से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। और यहां पर जो है एक आखिरी गाना आकांक्षा सिन्हा जी के लिए मैं प्ले करने वाली हूं, ये हमें सुनती है अहमदाबाद से और इन्होंने काफ़ी पहले ही अपनी फरमाइश यानी इन टाइम भेजी हुई थी। अब जो है हमारे कुछ श्रोताओं के जो भेजे हुए गाने हैं वो अवेलेबल नहीं है और साथ ही साथ विजेंद्र घाटोल जी का भी मुझे मैसेज आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप बने हुए हैं। पर मैं यही आपसे कहूंगी कि एक एक मैसेज अगर आप भेजेंगे तो आपका मैसेज ऊपर चला जाता है, देखने में समय लग जाता है और आपकी फरमाइश फिर शामिल नहीं हो पाती है। तो अभी क्योंकि समय हमारे पास कम है मैं आपका गाना नहीं प्ले कर पाऊंगी और साथ ही साथ बाकी हमारे जो श्रोता है जिन्होंने हमें मैसेज किया है वो है दादर से बाबा और जगदीश

मठाड़ जो है इनका नाम है मठाड़ू, और ये हमें करते हैं मैसेज मोगा पंजाब से, क्योंकि पहली बार पढ़ रही हूँ तो माफ कीजिएगा। मठाड़ू है इनका जो है सरनेम है। और संदीप कुमार जी हमें मैसेज करते हैं पूरी मक्कड़ परिवार की तरफ से, ये हमें जालंधर से मैसेज कर रहे हैं। हीरामणि वर्मा जी हमें मैसेज कर रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से, और साथ ही साथ मैसेज आया हमें रोहित सिंह चौहान इनका दिल्ली से। शुभलक्ष्मी मस्तकर जी का हमें मैसेज आया है, आगे अजय साखरे जी का इंदौर से, ये लिखते हैं इंदौर में एक दो तांगे होलकर राजवाड़ा से चलते हैं और शौकियाना लोग उसमें यानी शौकीन लोग उसकी सवारी करते हैं, इंजॉय करते हैं, और अभी सिर्फ परंपरा ही रह गई है बिल्कुल। और यहाँ पर जो है मुकेश कश्यप और इनका परिवार बने हुए हैं, स्वरण सिंह जी बने हुए हैं, दिग्दर्शन कविता अभिजीत गवहानकर, राकेश माथुर, गुरमीत सिंह, मीता सिंह और लालगिरी गोस्वामी, डिकैस्ट्रो जॉन, मेहर अरोड़ा, विजेंद्र घाटोल, ये सभी बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं हूँ वैशाली, मुझे दीजिए इजाजत। अब आने वाले दिनों में कभी किसी दिन मुलाकात बहुत जल्द होगी। सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स। साथ ही साथ ठीक 2 बजे आप सुन सकेंगे दिल्ली से प्रसारित होने वाले समाचार।

0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: श्री सिंह ने डीआरडीओ तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: ईडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी होगी।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
2: इंडिया टुडे, भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं दोनों बड़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा।
3: आवर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल अफेयर्स मस्ट कीप पेस।
0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट @AIR News हिंदी और पब्लिक पर @AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण
5: EPR व्यवस्था के अंतर्गत EPR प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न EPR ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
0: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
6: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि EPR विनिमयों और मिशन लाइफ जैसे

0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्धन्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब एक महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक हैं। वे देश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यावहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे, जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
2: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदर पूर्वक नमन करता हूँ।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुँचने वाला माध्यम है।
4: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ,

0: दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुच्चेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
1: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
2: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए से
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

वाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स। गुड इवनिंग मुंबई, शुभ संध्या। शाम के बज चुके हैं 5:03 और मैं आपके साथ रेडियो पर ट्यून इन कर चुका हूं। मैं यानी कौन, यानी आपका प्यारा आरजे अनूप। और जैसा कि मेरी प्रथा है दोस्तों, स्वागत मैं करूंगा आप सभी का एक मुस्कुराते हुए प्रणाम के साथ। आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो और शो कौन सा है आपका फेवरेट, लव यू जिंदगी। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इंटरनेट की इस दुनिया में ना हम इंसान के लव यू जिंदगी के मायने कितने कमाल के बन चुके हैं, है ना। इंटरनेट पर स्क्रॉल करते करते अचानक हमें कोई छोटी सी प्यारी सी चीज़ दिखती है, चाहे वो किसी बिल्ली का डांस हो, चाहे किसी बच्चे की एक तोतली सी हंसी हो, या फिर हो कोई अतरंगी ट्रेंड, और हमारा अंगूठा जो है तुरंत लाइक और शेयर बटन पर चला जाता है। सही कह रहा हूँ ना, देखते ही देखते वो चीज़ दुनिया में वायरल हो जाती है। यह इंटरनेट का वो जादू है दोस्तों, जो दुनिया भर के लाखों अजनबियों को ना एक मुस्कान के धागे में पिरो देता है। तो आज के हम शो में ना बात करेंगे इस खुशी की, इस प्यारे से वायरल फीवर की। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि लेते हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और लौटेंगे हम उस शो में जिसका नाम है लव यू जिंदगी।

वेलकम बैक दोस्तों। बात चल रही थी इंटरनेट पर हमारी उस आदत की, जहां कोई भी क्यूट सी चीज़ जो होती है ना, वो हमारा पुराना दिन बना देती है और हमारे अंदर जो है हमारे एक मुस्कान भर देती है। सोचिए, हम दिन भर अपने काम में कितना बिजी रहते हैं, थके हारे घर लौट रहे होते हैं और तभी फ़ोन पर एक 10 सेकेंड की रील आती है या कोई दूसरा एक वीडियो आ जाता है जिसमें हम क्या देख रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा जो बारिश में बिना चप्पल पहने दिल खोल कर नाच रहा है, या फिर कोई दादी पोते की जुगलबंदी। अचानक चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है ना, यही तो इंटरनेट का लव यू ज़िंदगी का पहलू है। जब हम किसी चीज़ को वायरल बनाते हैं तो हम सिर्फ एक वीडियो शेयर कर नहीं रहे होते, बल्कि उस पल से हमें मिली जो खुशियाँ होती हैं वो दूसरों में भी बांट रहे होते हैं। कहते हैं ना, हैप्पीनेस मल्टीप्लाइज व्हेन इट इज़ शेयर्ड, मतलब खुशियाँ जो है वो बांटने से ही तो बढ़ती है। सही तो है ना।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, शो का नाम है लव यू जिंदगी। मैं हूं आरजे अनूप और हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें कोई चीज़ हमारे मोबाइल पर या लैपटॉप पर या कहीं पर भी अच्छी लगती है डिजिटली, और कैसे हम उसे लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, और कैसे ये जो चीज़ है जब हज़ारों लाखों लोग करते हैं तो कैसे कोई चीज़ वायरल हो जाती है। तो बता देता हूँ कि अभी हमें कौन सुन रहे हैं। अमरावती से पंकज महोड़ है, बंगलुरु से मेगा है, प्रणव शिंदे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश माथुर जी भी है, सतीश वसंत कुलकर्णी पुणे से हमें जुड़ चुके हैं, विजेंद्र घटोल अकोला से कह रहे हैं कि अनूप जी गाने तो आज आप बहुत ही प्यारे बजा रहे हो। थैंक यू विजेंद्र जी। तो चलिए जब हम बात करें ना वायरल ट्रेंड्स की, तो इस वक्त आपके मेरे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हर जगह पर ना एक ही चीज़ छाई हुई है। क्या? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वो 80 के दशक का फोटो फिल्टर जो कि AI से हर कोई बना के अपलोड कर रहा है। बाप रे दोस्तों, हर कोई अपने आप को ना 80 के बॉलीवुड हीरो या हीरोइन वाले लुक में ऐसा ढाल रहा है, देखकर तो बड़ा मज़ा आ रहा है। वैसे वो बड़े बड़े फूले हुए बाल, बड़ी बड़ी मूछें, वो चमकीले एवर ग्रीन कपड़े और विंटेज स्टूडियो लाइट वाले फोटोज, क्या बात है। अचानक हर कोई ना अपने आप को पुराने हीरो हीरोइन या कोई एक कलाकार कैरेक्टर जैसे दिखने की होड़ में लगा चुका है। लेकिन सच कहूँ दोस्तों, इसमें जो नॉस्टैल्जिया है ना, जो हमारे मम्मी पापा के ज़माने की यादें हैं, वो दिल को छू लेती हैं। मैंने भी वैसे सोचा था कि अपना एक 80 के दशक वाला फ़ोटो बनाकर पोस्ट करूं, लेकिन मैं शर्मा गया, नहीं कर पाया। पर अगर आपने भी ये ट्रेंड ट्राई किया तो मुझे बताइए, और कैसे बताएंगे आप, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, जो है 8657661071। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा और कुछ जवाब मैं पढ़कर सुनाऊंगा, ठीक है, इस गाने के बाद।

0: रानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आरजे अनूप, आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी। हमें जुड़ने वालों में जुड़ चुके हैं प्रमोद चिंचोड़कर जी उमरी अकोला से, प्रदीप अनंत कृष्णन जी, अरविंद कुलकर्णी जी और कल्पना राजू जी उल्हासनगर से। दोस्तों 80s वाइब के बीच में ना, जिसकी हम बात कर रहे थे, चलिए और थोड़ा सा पीछे चल लेते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने कुछ ऐसे ट्रेंड्स देखे, हमारे सामने कुछ ऐसे ट्रेंड्स आए हैं जिन्होंने पूरे भारत को नचाया है, हंसाया है और एक साथ ला खड़ा किया है। तो चलिए थोड़ी रोशनी डालते हैं, कुछ बात कर लेते हैं हल्की फुल्की ऐसे ही वायरल ट्रेंड्स की। पहले तो कौन भूल सकता है हमारे डांसिंग अंकल यानी संजीव श्रीवास्तव जी को, जो 2018 में हमारे बीच बनकर आए थे एक प्रकार के गोविंदा अंकल। एक शादी के डांस वीडियो ने रातों रात पूरे भारत का दिल जीत लिया था, हम सभी को याद है ना। और ये हम सबके सामने साबित कर दिया सर ने कि डांस करने की ना कोई उम्र नहीं होती। और क्या नाचे थे सर, सबको थिरकने पर मजबूर कर दिया था। और हर इंसान ने एक बार नहीं बल्कि उस वीडियो को कई बार देखा था। दूसरा कौन भूल सकता है यशराज मुखाटे जी के उस मज़ेदार रैप मीम सॉन्ग को, जिसका नाम था रसोड़े में कौन था। इसके ऊपर तो दोस्तों इतने लोगों ने ऐसी ऐसी रील्स बनाई कि उफ क्या कहें, मज़ेदार, इंस्टाग्राम भर चुका था। और कुछ ही साल पहले वेस्ट बंगाल के भुवन बद्याकर ने एक ऐसा गाना गाया पीनट बेचते बेचते कि पूरी दुनिया में वायरल हो गया, और उस गाने का नाम था कच्चा बादाम। इस गाने पर नाचे हैं पूरे भारतवासी और ऐसे नाचे हैं कि क्या कहें दोस्तों। फिर इसी साल आया था छत्तीसगढ़ के सहदेव डिरडो, एक छोटे से बालक का, उनकी इतनी मासूमियत से अपनी क्लास में गाया एक गाना जिसका नाम था बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। और उस गाने ने, उनकी मासूमियत ने करोड़ों लोगों के दिल जीते, है ना। और इतने दिल जीते और किस किस के दिल जीते क्या कहें।

मशहूर सिंगर बादशाह ने तो उनके उस गाने पर एक रीमिक्स गाना ही बना दिया। तो वायरलिटी जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कितना प्यारा होता है, कितना अद्भुत होता है, और इसके पीछे का साइंस जो है केवल और केवल इंसानी इमोशंस ही है। कब हमें क्या चीज़ अच्छी लग जाएगी, क्या चीज़ दिल को छू जाएगी, ये बनाने वाला नहीं जानता, पर जब वो हमारे सामने आती है, हमारे दिल के तारों को जब वो छेड़ती है, तब उसको जो प्रतिसाद मिलता है लोगों से, उससे वो चीज़ वायरल हो जाती है और चमत्कार हो जाता है दोस्तों। ये हम देख चुके हैं और मज़ा आता है देखकर कि भारत से निकले दुनिया भर में अपना डंका बजाने वाले ऐसे ऐसे वायरल ट्रेंड्स हम देख रहे हैं कि क्या ही कहें।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी। मैं हूं आपका आरजे अनूप और हमारा स्टेशन है 107.1 एफएम रेनबो। बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और हमारे काफ़ी श्रोतागण हमसे जुड़ भी चुके हैं। फिरोज सिगनपुरिया जी कह रही हैं कि हाय, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं फिरोज जी, थैंक यू। संजय पाटिल जी ने कहा है नमस्कार। रामदास तांबे जो हैं डोंबिवली से हमें जुड़ चुके हैं। रघुनाथ खंडूकर जो है कोल्हापुर से कह रहे हैं गाने बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और हैदराबाद से दिव्या दत्त भी हमें जुड़ चुकी है। अमित भगत हमें कह रहे हैं कि अनूप जी आप बात तो सही कह रहे हो और मुझे ये 80s का जो ट्रेंड है वायरल जो अभी चल रहा है देखकर बहुत मज़ा आ रहा है, पर मैंने अभी तक इस चीज़ का प्रयत्न नहीं किया है, पर अच्छा लग रहा है देखकर। तो अमित भगत जी आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अगर अच्छा लग रहा है तो दे दीजिए एक कोशिश इस चीज़ को भी, क्या पता कि आपका जो लुक है वो भी वायरल हो जाए। क्यों, सही कहा ना?

इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, और क्या ये वायरल जो चीज़ें हो जाती है हमारे साथ डिजिटली, उसके लिए भी वाजिब होगा? मुझे लगता है हाँ, क्योंकि देखिए वायरलिटी जो होती है वो क्यों होती है और हमें उसमें क्या अच्छा लग जाता है, क्या कहें, किसी को नहीं पता। और फिर हमें उस वायरल चीज़ से प्यार भी हो जाता है, मुझसे अपने दोस्तों से, अपने नेटवर्क से शेयर भी करते हैं। तो इस प्यार को क्या नाम दें, सही में इसका कोई जवाब नहीं हो सकता शायद। तो दोस्तों, ट्रेंड्स आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन जो बात हमेशा रहेगी वो है हमारा एक दूसरे से जुड़ना और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाशना, है ना? तो अगली बार जब आप इंटरनेट पर कोई क्यूट, मासूम या मज़ेदार चीज़ देखें तो कंजूसी मत करिएगा, दिल खोलकर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, और इसी बहाने किसी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान ले आइएगा, क्योंकि ज़िंदगी तो खूबसूरत है ही, इसे थोड़ा सा और लव यू ज़िंदगी बना देते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे अनूप, 107.1 FM रेनबो पर। ठीक इस गाने के बाद 6:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार मराठी में, जिसके बाद 6:15 पर मैं लेकर आऊँगा आपके सामने हमारा शो अंदाज़े बयां, जिसमें मैं आज बात करूँगा एक बहुत ही क्यूट हस्ती की, जिसका माहौल अभी पूरे देश में छाया हुआ है। तो कहते हैं एक बार गणपति बप्पा मोरिया, और गाने के बाद मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आकाशवाणी एफ एम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: गुड इवनिंग मुंबई, शुभ संध्या। फिर एक बार आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने। मैं यानी कौन, आरजे अनूप। आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो और लेकर आया हूँ कौन सा शो आपके सामने, अंदाज़े बयां। और जैसा मेरी प्रथा है दोस्तों, स्वागत करूँगा आप सभी का एक मुस्कुराते हुए प्रणाम के साथ। दोस्तों, अंदाज़े बयां में ना हम हमेशा बात करते हैं कविताओं की, शेरो शायरी की, पर देखिए अंदाज़े बयां तो कुछ भी हो सकता है ना। सही कह रहा हूँ ना? बेसिकली ये तो एक वो चीज़ हो सकती है जिससे हम किसी भी चीज़ को बयां कर सकें, और हर इंसान का तरीका अपना अपना हो सकता है। किसी के केवल देखने का अंदाज़ ही उसका अंदाज़े बयां हो सकता है, तो केवल किसी के चलने का तरीका उसका अंदाज़े बयां हो सकता है, किसी की नटखट शरारतें उसका अंदाज़े बयां हो सकता है, कुछ भी है ना। अभी तो देखिए गणेश उत्सव का माहौल है और चारों तरफ अलग ही रौनक और धूम मची हुई है। और दोस्तों, ऐसे समय में अगर हमें बात करनी हो किसी के अंदाजे बयां की, तो हमारे प्यारे गणपति बप्पा से बेहतर और कौन हो सकता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे बप्पा की, कि कैसे उनका अंदाज अपने आप में ऐसा अनूठा है और हम सबको क्यों उनकी इस अंदाज और उनके इतनी जो नटखट किस्से है इतना प्यार आता है उन पर, और कैसे उनके जो ये अंदाज है उससे हमें क्या क्या सीखने को भी मिलता है। मिलेंगे ठीक है इस गाने के बाद।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे 107.1 FM रेनबो। मैं हूं आपका अपना आरजे अनूप। आज अंदाजे बयां में हम बात कर रहे हैं हम सभी के प्यारे नटखट और सबके फेवरेट बाल गणेशा की क्यूट कहानियों की, जिनमें छुपी है लाइफ की बड़ी बड़ी सीखें भी। दोस्तों यही तो उनका अंदाजे बयां है ना। तो पहली कहानी चालू करते हैं। देखिए, जब कार्तिकेय जी और गणेशा जी में किसी बात को लेकर एक रेस लगी कि कौन पूरी दुनिया का चक्कर सबसे पहले लगाएगा, तो कार्तिकेय जी अपने मोर पर उड़ गए क्योंकि उनका वो वाहन था। पर हमारे बप्पा, उन्होंने देखा कि मेरा वाहन जो है वो तो मूषक है। और फिर उन्होंने मन ही मन थोड़ा सा मुस्कुराया और क्या किया, उन्होंने शिव जी और माता पार्वती के 3 चक्कर लगा लिए और कहा कि मेरे लिए तो आप ही मेरा पूरा संसार है। तो इस छोटी सी जो कहानी थी, एक्चुअली कहानी तो बहुत बड़ी है, पर छोटे से शब्दों में मुझे आपको सुनानी पड़ेगी क्योंकि समय का अभाव है ना दोस्तों। पर इस कहानी से हमने क्या सीखा कि जो हमारे माता पिता होते हैं ना दोस्तों, वही हमारी दुनिया होते हैं। और कठिन मेहनत के साथ साथ देखिए स्मार्ट वर्क भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि वो भी हमें आगे रखता है। और माँ बाप जो होते हैं वही तो हमारी जड़ें हैं, और अपनी जड़ों का सम्मान करना ही हम सबको जो है असली ताकत देता है।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आरजे अनूप, आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो। शो का नाम है अंदाजे बयां। और आज मुझे इतना मजा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे गणपति बप्पा की, कि कैसे उनका जो अंदाजे बयां है वो अपने आप में कितना नायाब अनूठा है, और मजाक मजाक मस्ती में कैसे उनके अंदाजे बयां से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिल रही है। जल्दी से नाम ले लेता हूँ कुछ लोग जो हमें जुड़ चुके हैं। वो है पुणे से मिलिंद और अश्विनी जोग। सुरेंद्र कह रहे हैं कि गाने आप बहुत ही प्यारे बजा रहे हैं अनूप, थैंक यू। और लंदन से शीतल और प्रिशा हमें सुन रही हैं, कह रही हैं कि मेलोडियस सॉन्ग। थैंक यू शीतल, थैंक यू प्रिशा। सांगली से रीमा नाइक है, संगन नागेजी जी हमें सुन रहे हैं। वैदे ही कह रही गाने बहुत अच्छे बजा रहे हैं। राकेश माथुर जी का मैसेज आया, कह रहे हैं कि मैं ड्राइव कर रहा था तो कुछ चीज़ें नहीं सुन पाया, शायद आपने मेरा नाम लिया हो। तो राकेश माथुर जी वेलकम, आई होप अब आपने सुन लिया हो आपका नाम। तो चलिए बात करते हैं थोड़ी सी और हमारे प्यारे बप्पा की नटखट कहानियों की। तो एक बार क्या हुआ ना कि जो धन के

देवता कुबेर हैं, उन्हें थोड़ा सा अभिमान हो गया अपनी विलासियत पर, तो वे भोजन का निमंत्रण इनविटेशन लेकर पहुंचे कैलाश पर्वत। तो शिवजी और पार्वती जी ने कहा कि हम तो नहीं आ पाएंगे, पर उन्होंने अपनी जगह बप्पा जी को भेजा। फिर क्या था, छोटे से गणेश जी ने कुबेर के महल का सारा खाना ख़त्म कर दिया। खाना ख़त्म हुआ तो वो बर्तन भी खा गए, यहाँ तक कि महल का फर्नीचर भी खाना शुरू कर दिया। तो अब इससे परेशान होकर कुबेर जी जो है वो भागे भागे शिव जी के पास गए और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हो चुका है। तो पार्वती जी जो है वो एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने अपने बप्पा के लिए कटोरी चावल के मुरमुरे दिए और कुबेर जी से कहा कि वह उन्हें दे दीजिए। कुबेर जी जब वह लेकर गणेश जी के पास पहुँचे तो गणेश जी ने हंसते हंसते उसे स्वीकार किया और कहा कि अब मेरा पेट भर चुका है। कितनी मज़ेदार कहानी थी और इससे कुछ चीज़ें सीखने भी हमें मिलती है दोस्तों। और क्या सीख रहे हैं हम कि अहंकार होता है ना, वो कभी सच्ची संतुष्टि नहीं दे सकता। और ये हमने अपने आसपास हर जगह आज के ज़माने में भी देखा ही है। और दिखावा करने से रिश्ते भी नहीं बनते। असल बात तो यह है कि प्रेम और अपनापन ही जो है ना दोस्तों, वही सच्चे दिल को तृप्त करता है। पर खैर छोड़िए, कितनी नटखट सी कहानी थी ये हमारे बप्पा की। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बप्पा जी कितने भी बड़े हो जाए पर उनका दिल तो है एक मासूम बच्चे जैसा ही रहेगा।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो और मैं हूं आरजे अनूप। हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे बप्पा की अनोखी कहानियों की, जो बनाता है उनका अंदाजे बयां हमारे लिए कुछ स्पेशल। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि गणपति जी का एक दांत टूटा हुआ क्यों है? तो इसकी दो कहानियां हैं। चलिए पहली कहानी सुनाता हूँ कि जब ऋषि व्यास जी महाभारत डिक्टेट कर रहे थे तो उन्होंने एक शर्त रखी कि लिखना जो होगा ना वो बिना रुके ही होना चाहिए। तो बीच में क्या हुआ, गणेश जी का जो पेन था वो टूट गया जिससे वो लिख रहे थे। तो बप्पा ने बिना वक्त गवाए अपना एक दांत तोड़ा और उसे ही कलम बनाकर पूरी एपिक लिख डाली जो उन्हें डिक्टेट की जा रही थी। तो एक और कहानी जो है वो गणेश जी का दांत टूटने की है, वो ये कि भगवान परशुराम जी जो है उनके फरसे से दांत टूटा था, पर जो महाभारत लिखने के दौरान उन्होंने अपना दांत तोड़कर जो उसे कलम का इस्तेमाल किया वो थोड़ी सी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये भी कहानी अपने आप में देखी कितनी रोचक है कि बिना वक्त गवाए उन्होंने तुरंत एक उपाय सोच लिया। तो इससे क्या सीख रहे हैं हम कि देखिए, बहानों से बड़ा ना समझदारी का काम होता है। और जीवन जो है कठिन ही है, हम सभी के साधन जो है कभी पर्याप्त नहीं हो सकेंगे। तो साधन कम हो या रुकावट बड़ी, अगर इरादा पक्का हो ना दोस्तों, तो समाधान जो है खुद ब खुद ही निकल आता है। तो हम भी कहते ही हैं ना कि ज़िंदगी कैसी पहेली है तू। और जब हम लड़कर जीतते हैं और हम एक दूसरे से भी कहते हैं कि बस लड़, हार मत मान और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का सोचेगा तो जीत जाएंगे हम दोस्तों।

वेलकम बैक दोस्तों। जी हाँ, ज़िंदगी हर कदम एक जंग ही तो है, पर हमने बप्पा से यही तो सीखा है कि अगर कठिन परिस्थितियाँ भी हो तो उससे घबराना नहीं, बल्कि उसका तुरंत समाधान निकल कर हमें आगे की ही राह पकड़नी है। तो जल्दी से नाम ले लेता हूँ जो हमें जुड़ चुके हैं, वो है अविनाश जाधव, तालुका गंगाखेड़ परभणी से, और राकेश माथुर जी कह रहे हैं कि बहुत ही रोचक कहानियाँ आप सुना रहे हैं अनूप, और थैंक यू राकेश जी। ममता जो है टोरंटो से हमें सुन रही है और कह रही है कि यहाँ बैठ कर गणपति मिस भी कर रही हूँ, पर जो आपकी स्टोरीज़ है वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ। तो थैंक यू ममता जी, आप वहाँ टोरंटो में बैठ कर हमें सुन रही हैं। तो दोस्तों, एक आखिरी कहानी की ओर मोड़ करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो एक रात क्या हुआ ना कि बप्पा जी जो है हमारे, वो मोदक खाकर अपने छोटे से मूषक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में कुछ हुआ तो मूषक जो थे उनका संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया और इसी कारणवश गणेश जी जो है हमारे नीचे गिर गए, तो कुछ उनके मोदक भी नीचे गिर गए। तो जब ये चंद्रमा ने देखा तो उन्होंने थोड़ा सा हंस दिया और गणेश जी जो है हमारे, उनको ना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उन्हें एक लेसन सिखाने के लिए कुछ श्राप दे दिया। पर बाद में क्या हुआ ना, चंद्रमा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उनसे माफ़ी भी मांगी, तो गणेश जी ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सीखने को मिली है दोस्तों, कि कभी ना किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और किसी की लाचारी या बनावट पर हंसना भी कितना गलत होता है ना, तो ऐसा ना करें तो बेहतर है। पर देखिए, हम सभी इंसान हैं और हम सभी इंसानों से कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, और गलती करते हैं अगर हम तो उसके बाद माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए, और अगर आगे वाला कोई हमारे सामने गलती करता है तो उसकी गलती पर हमें उसे माफ़ भी कर देना चाहिए, क्योंकि जो गलती कर कर माफ़ी मांगे या फिर जो किसी की गलती पर माफ़ी दे, वही तो होता है ना सिकंदर।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, और अंदाज़े बयां का सफ़र यहीं समाप्त होने को आया है। पर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि 7 बजे आप सुनेंगे मराठी में प्रादेशिक समाचार, और ठीक 7:10 पर मैं आऊँगा आप सभी के सामने लेके हमारा शो हम तुम लिसनर्स चॉइस, जहाँ आप मुझे कर सकते हैं आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश हमारे व्हाट्सएप के द्वारा, जो हमारा नंबर है 8657-66-1071, 8657-66-1071। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, कौन सी फिल्म का है, ये लिखकर भेजिए, और इसी के साथ लिखकर भेजिए आपका नाम और आप कहाँ से हमें मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो अच्छा लगता है ना जानकर कि कहाँ कहाँ से लोग हमें सुन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे गणपति बप्पा, स्मार्ट, लविंग, फॉरगिविंग और सबसे बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर। उनकी एक क्यूट कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी को खुश होकर और स्मार्टनेस के साथ

कैसे जीना है, कठिन परिस्थितियों में संयम के साथ कैसे आगे बढ़ना है, और आपसी रिश्तों में कैसे प्रेम से ना संतुलन बनाए रखना है। मैं हूँ आपका प्यारा आरजे अनूप, 107.1 FM रेनबो पर। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, बप्पा की ब्लेसिंग्स लेते रहिए। ठीक इस गाने के बाद मैं आपके सारे गाने नोट डाउन करूँगा और प्ले करूँगा 7:10 से। और यही कहना चाहूँगा कि बप्पा जी जो हैं हमारे काफ़ी अलबेले हैं, क्यों सही कहा ना।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: गुड इवनिंग, शुभ संध्या। फिर एक बार आया हूं मैं आप सभी के सामने लेकर आपका फेवरेट शो जो होता है हर शाम 7:10 पर, जिसका नाम है हम तुम लिसनर्स चॉइस। और जैसा कि मेरी प्रथा है, स्वागत मैं करूंगा आप सभी का एक मुस्कुराते हुए प्रणाम के साथ। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के। और पहली जो गुजारिश आई है आज हमें, वो आई है अंधेरी वेस्ट से सुरेंद्र जायसवाल जी की। वो कह रहे हैं कि हेलो अनूप, लिसनिंग टू योर शो, आपका शो सुन रहे हैं हम हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के साथ, जो हैं तुलसी डेम्बला जी, नरेश शाह, विजय दिडवानिया जी हैं, राम बाबू बंसल जी हैं और विनोद मदरानी जी हैं। गाने की फरमाइश इन्होंने जो की है, क्या बात है, बड़ा प्यारा गाना है फिल्म खामोशी का, वो शाम कुछ अजीब थी। तो चलिए सुरेंद्र जी, आपके और आपके सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए आरजे अनूप का ये गाना।

वेलकम बैक दोस्तों, और आप सुन रहे हैं हम तुम लिसनर्स चॉइस। और अगला जो गाना है इसकी फरमाइश की है सांगली से छाया जी ने, जिनके साथ रीमा नाइक, संगन नागे जी और जीवन नाइक भी है। और बड़ा ही प्यारा सा गाना है, फिल्म है पड़ोसन।

गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो पर हम तुम लिसनर्स चॉइस, और मैं हूं आरजे अनूप आप सभी के साथ में। अगला जो गाना है बहुत ही प्यारा गाना है, मुकेश जी की आवाज़ में इसकी फरमाइश हमसे की है संजय भंडारी जी ने, उनके साथ है दीपाली भंडारी जी, और इसी गाने की फरमाइश हमें की है विजेंद्र घटोल जो है अकोला से, और जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह और कितने सारे लोग हमें कहां कहां से सुनते हैं जानकर ही बड़ा अच्छा लग जाता है। तो आइए सुनते हैं आनंद फिल्म से ये गाना मुकेश की आवाज़ में, कहीं दूर जब दिन ढल जाए।

वेलकम बैक दोस्तों, 107.1 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं हम तुम लिसनर्स चॉइस। और अगला जो गाना है बहुत ज़्यादा प्यारा है, कुमार सानू की आवाज़ है, फिल्म का नाम है दीवाना। इसमें थे शाहरुख खान, ऋषि कपूर और बेहद सुंदर अदाकारा दिव्या भारती। गाने का नाम है सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के नहीं, और गाने की फरमाइश की है गोपी जो सुन रहे हैं हमें झारखंड से, राकेश माथुर जी, हितेंद्र दास जी, पंकज महोत जी और उदयपुर से भाग्यश्री मिश्रा जी।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो पर, हम तुम लिसनर्स चॉइस, मेरे यानी आरजे अनूप के साथ। और अगला जो गाना है बहुत ही मस्ती भरा गाना है, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। गाने का नाम है बार बार देखो हज़ार बार देखो, और इस गाने की हमें फरमाइश की है सुप्रिया अग्निहोत्री जी ने, प्राजक्ता अग्निहोत्री। उनके साथ हैं परिमल मंजरी, अनाहिता, शैलजा गोरे, काजल कक्कर चेंबूर से, प्रदीप अनंत कृष्णन जी भी जुड़े हैं। और बैंकॉक से हमें मैसेज किया है कुणाल और जैनम ने, कह रहे हैं आपका हम शो यहाँ पर सुन रहे हैं, रात के बज चुके हैं करीब 9 और खाने का समय हो चुका है, खाते खाते आपको सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। कुणाल और जैनम, थैंक यू, आप वहाँ बैठ कर मुझे सुन रहे हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। बार बार सुनिए, और अभी के लिए गाना सुनिए जो है बार बार देखो।

वेलकम बैक दोस्तों, 107.1 एफएम रेनबो पर हम तुम लिसनर्स चॉइस आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे अनूप के साथ। अगला जो गाना है उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, यारा दिल दारा फिल्म से, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा गाना है। गाने के बोल है, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, और गाने की फरमाइश हमें किसने की है, कल्पना राजू उल्हास नगर से, दत्ता केदार जो है पंडरपुर से, और फिरोज सिगनपुरिया जी जो है उन्होंने, और फिरोज सिगनपुरिया जी से क्षमा चाहता हूँ, बहुत देर से मैसेज कर रहे हैं पर उनका नाम नहीं ले पाया। आशा करता हूँ फिरोज जी आपको ये गाना पसंद आएगा।

और हमें भी गाना तो प्ले करना ही पड़ा ऑडियंसेस, क्योंकि आपसे हमारी ऐसी दिल लगी जो है। तो जाने का समय जैसे जैसे पास आता है ना, थोड़ा सा बुरा लगने लगता है, पर अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि कल सुबह फिर मैं आपसे मिलूँगा 8 बजे, और अगला जो गाना है वो मुझे बहुत पसंद है। विनोद राठौड़ जी की आवाज़ है और फिल्म का नाम है मोहब्बत। फिल्म में थे संजय कपूर, अक्षय खन्ना और माधुरी दीक्षित। इस गाने की फरमाइश की है पश्चिम सिंहभूम चयबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपिक गोप और दीपाली गोप ने। और गाने के बोल हैं आईना बता कैसे उनसे मिलने जाना है।

मौसम तो मुंबई में बहुत हसी हो चुका है, सुनने में आया हमारे स्टूडियो के बाहर झमाझम बरसात हो रही है। पर दुख की बात यह है मेरे लिए दोस्तों कि मुझे अब बस आपसे विदा लेने का समय आ चुका है और ये आखिरी गाना है। उसके पहले मैं आपसे कह देता हूँ कि फिर मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। मैं हूँ आरजे अनूप, लेकर आऊँगा एक नया शो आप सभी के सामने, कहाँ 107.1 FM रेनबो। और जाते जाते आखिरी गाना जो है प्यार के साइड इफेक्ट फिल्म से, और इसकी फरमाइश हमसे की है प्रणव शिंदे जी ने और मेहर अरोरा जी ने। घाटकोपर से शरद खानोलकर जी है और सूरतगढ़ से लक्ष्मी जी ने भी इसकी फरमाइश की है। इचलकरण जी से अरविंद कुलकर्णी जी ने और दत्ते रंगी भाटपारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा जी ने। तो चलिए सुनते हैं जाने का जाने मन बावरा, और इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा दोस्तों। फिर मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। जाते आते आप सभी को जैसा मैं हमेशा करता हूँ एक मुस्कुराता हुआ प्रणाम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के

0: बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं, और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं, और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा कि एक ऐतिहासिक समझौता है।
3: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
4: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्ति

0: से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रूपये से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रूपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रूपये प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 43 अरब 81 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर 26.86 करोड़ डॉलर पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकें और किसानों को लाभ पहुंचा सकें। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
1: We need to develop sports infrastructure.
2: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
1: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
0: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT और NEET प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे IIT JEE एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं, वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने HIV/AIDS के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10

आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स। Just pretend.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेदा और तर्फ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइलों से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज

0: ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
1: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 17वीं सदी के कवि संत मकुल दास महाराज की स्मृति में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। श्री सिंधिया ने संत मलुकदास को आध्यात्मिक शक्ति का वाहक बताया और देश में मुश्किल दौर में भी सनातन धर्म की मूल भावना को बनाए रखने में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है उसके पीछे केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि गहरा सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी है जो दूसरे देशों से उसे अलग बनाता है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कभी कभी किसी से मिलने की इच्छा इतनी सरल होती है कि उसके लिए कोई बहाना भी नहीं चाहिए। बस मन करता है कि वो आए, कुछ देर बैठे, कुछ कहे या फिर कुछ ना भी कहे और फिर चुपचाप चला जाए। कुछ मुलाकातें इसी तरह यादें बन जाती हैं। रिश्ते में कुछ रातें ऐसी भी होती हैं दोस्तों, जब चांदनी तो बहुत होती है लेकिन मन के किसी कोने में अंधेरा फिर भी बना रहता है। शायद इसीलिए कि उजाला बाहर नहीं भीतर चाहिए होता है, और बस यही उजाला शायद जिंदगी को रोशन रखता है।

जिंदगी का रंग एक नहीं होता, उसी तरह मोहब्बत का भी कोई एक रंग नहीं होता। दोस्तों, कभी मिलना अच्छा लगता है तो कभी बिछड़ना बहुत कुछ सिखा जाता है। कभी किसी की मौजूदगी दिल को अपार खुशी देती है और कभी किसी की याद आंखें नम कर जाती है। और शायद यही तो जिंदगी की खूबसूरती है ना, हर रंग को महसूस करना। रंगे महफिल में आप आज हैं विनीता बेदी के साथ।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: कोयल सी तेरी बोली तेरे छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

रंग महफिल में आज आप हैं विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुछ रिश्तों की, कुछ यादों की, कुछ शिकायतों की, तो कुछ तन्हाइयों की। रिश्तों में शिकायतें भी होती हैं और समझौते भी। कभी हम किसी अपने को खोते हैं, कभी खुद अपने ही आप को, और फिर बहुत देर तक सोचते रहते हैं कि आखिर कहाँ हुई थी गलती। शायद हर कहानी का कोई एक गुनाहगार नहीं होता, या फिर कई मर्तबा कहानी ही गुनाह बन जाती है ना। रंग महफिल में आप हैं विनीता बेदी के साथ।

रंग महफिल में आप हैं विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, हम सफर होना सिर्फ साथ चलना नहीं है, हम सफर तो वो है जो रास्ते की थकान को भी समझे, जो हमारी खामोशी को पढ़ सके और जिसके साथ चुप रहना भी बातचीत जैसा लगे। ऐसे साथ की कीमत वही जानता है जिसने कभी अकेले सफर किया हो।

0: और अब आज की महफिल की आखिरी गजल। दिल है तो धड़कता भी है, टूटता भी है, संभलता भी है, इसी दिल में शिकायतें भी रहती हैं और माफ कर देने की जगह भी। शायद इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि सब कुछ सह लेने के बाद भी दिल में मोहब्बत बची रहती है। उसी तरह जैसे कुछ गजलें खत्म हो जाती हैं लेकिन उनका असर देर तक हमारे साथ रहता है, जैसे कोई धीमी सी आवाज, जैसे किसी पुराने खत की खुशबू या जैसे किसी अपने की याद। चलिए वक्त है रुखसती
1: का है।
0: मैं हूँ विनीता बेदी, आपसे विदा लेती हूँ इसी ख्याल के साथ कि कुछ रिश्ते पास रहकर नहीं दिल में रहकर उम्र भर साथ चलते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई महफिल में कुछ नए एहसासों के साथ। तब तक विदा, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।
1: गायकों के लिए गालिब सदाबहार हैं, वो किसी भी लिबास में सज जाते हैं। जगजीत ने उन्हें मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्ड किया।

यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो। आइए सुनते हैं मुख्य समाचार। भारत ने कहा कि चीन के साथ संबंधों में मुख्य चिंताएं दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने लाल सागर में स्थिति बिगड़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। हौसी हमले की आशंकाओं के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। व्यक्तियों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर शुल्क लगेगा। केंद्रीय उपभोक्ताओं संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर अगस्त में मामूली रूप से घटकर 5% हुई। जुलाई महीने में यह 5.1% थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किसाऊ बहुउद्देश्य बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली सरकार ने विद्यार्थियों के लिए 10,000 सुरक्षित और किफायती हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की। दिल्ली में आशा कार्यकर्ताओं का निर्धारित मासिक प्रोत्साहन 3,000 रुपए से बढ़कर 6,000 रुपए किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा और दिल्ली में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और आइए सुनते हैं हमारा कार्यक्रम जीरो आर शो। मैं हूं आपके साथ शीतल गुप्ता।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम 08 शो। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब सुनते हैं मुख्य समाचार। भारत ने कहा कि चीन के साथ संबंधों में मुख्य चिंताएं दूर करने में आपसी सम्मान, हित और

संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने लाल सागर में स्थिति बिगड़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। हौसी हमले की आशंकाओं के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों के बीच UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। व्यक्तियों से व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के लेन देन पर शुल्क लगेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर अगस्त में मामूली रूप से घटकर 5% हुई। जुलाई महीने में ये 5.1% थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देश्य बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली सरकार ने विद्यार्थियों के लिए 10,000 सुरक्षित और किफायती हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की। दिल्ली में आशा कार्यकर्ताओं का निर्धारित मासिक प्रोत्साहन 3,000 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। और दिल्ली में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: श्रोता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल और अब वक्त है कार्यक्रम सुहानी रात का। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरती।

श्रोता आप सुन रहे हैं AR FM रेनबो और कार्यक्रम है सुहानी रात। और देखिए इस वक्त हमें एक मैसेज आया है और ये मैसेज हमें भेजा है रविंदर लखेरा जी, ये सिरसा हरियाणा से हमें मैसेज कर रहे हैं और इन्होंने फरमाइश की है खलनायक मूवी से एक सॉन्ग की। तो चलिए इन्हीं की पसंद पर हम सुनवाते हैं हम अगला गीत खलनायक मूवी का।

तो श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ एक और श्रोता जो है वो जुड़ चुके हैं, एम राजकुमार त्रिची से। इन्होंने हमें मैसेज किया है कि हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और एक और श्रोता जो अंकित, ये हमें मैसेज कर रहे हैं, ये अमरोहा से हमें मैसेज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हम आपके कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए अगला अब गीत आपको सुनवाते हैं हम उदित नारायण की आवाज़ में।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: कोयल सी तेरी बोली,
7: हाय
6: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
7: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
6: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
7: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
8: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए सुनते हैं मुख्य समाचार। भारत ने कहा कि चीन के साथ संबंधों के मुख्य चिंताएं दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने लाल सागर में स्थिति बिगड़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। हौसी हमले की आशंकाओं के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। व्यक्तियों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर शुल्क लगेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर अगस्त में मामूली रूप से घटकर 5% हुई। जुलाई महीने में यह 5.1% थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देश्य बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने आशा कर्मियों के मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा और दिल्ली में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शीतल गुप्ता। और आइए अब सुनते हैं हमारा कार्यक्रम भुलाए ना बने।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। अब आप सुनेंगे मुख्य समाचार। भारत ने कहा कि चीन के साथ संबंधों में मुख्य चिंताएं दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को दो अलग अलग निमंत्रण भेजे थे। इनमें से एक द्विपक्षीय यात्रा के लिए और दूसरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए। भारत ने लाल सागर में स्थिति बिगड़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। हौसी हमले की आशंकाओं के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण शुरू हो गया है। यह सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। व्यक्तियों से व्यापारियों को 2000 से अधिक के लेन देन पर शुल्क लगेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी कैच द रेन का एंथम जारी किया है, जो जन भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के राष्ट्रव्यापी अभियान को संगीतमय स्वर प्रदान करता है। ये गाना प्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने गाया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी का विरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली सरकार ने आशा कर्मियों के मासिक प्रोत्साहन राशि को 3000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए करने की घोषणा की है और दिल्ली में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल।

0: आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेडियो चैनल है और श्रोताओं, स्टूडियो के घड़े में समय हुआ है 3:03 और अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का, मिडनाइट मेलोडीज। और इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। स्टूडियो की घड़ी में 4 बजने को है। यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। अब वक्त हो चला है समाचारों का। भारत ने कहा कि चीन के साथ संबंधों में मुख्य चिंताएं दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को 2 अलग अलग निमंत्रण भेजे थे। इनमें से एक द्विपक्षीय यात्रा के लिए और दूसरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए। भारत ने लाल सागर में स्थिति बिगड़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। हौसी हमले की आशंकाओं के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण शुरू हो गया है। यह सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। व्यक्तियों से व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के लेन देन पर शुल्क लगेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जनभागीदारी कैच द रेन का एंथम जारी किया है, जो जनभागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के राष्ट्रव्यापी अभियान को संगीतमय स्वर प्रदान करता है। ये गाना प्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने गाया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी का विरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किसाऊ बहुउद्देश्य बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली सरकार ने आशा कर्मियों के मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की है। और दिल्ली में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट शीतल, और वक्त हो चला है कार्यक्रम सारे गामा का।

इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: शुरू हुई है
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

कैसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।